सुप्रभात। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई वर्ष 2026। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है

0: कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ. जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हर रोज़ की तरह आइए कार्यक्रम वंदना में सबसे पहले वंदन करते हैं अपनी मातृभूमि का समूह स्वर में इस देशगान के साथ।

समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी।

आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। प्रहलाद शिंदे की आवाज़ में आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये बुद्ध वंदना।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ में कल्पना फिल्म से ली गई ये प्रार्थना।

0: मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ में ये था कल्पना फिल्म से लिया गया भक्ति गीत। इसी गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना भी यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख कैलाश पचौरी का है।
1: युद्ध में देवताओं ने जब असुरों को जीत लिया तो वे समझ बैठे कि वे बड़े शक्तिशाली हैं और ये मानने लगे कि उन्होंने अपने बल से ही असुरों को

0: पिता है, उन्हें अभिमान आ गया। कहा जाता है कि परमेश्वर ने देवताओं के इस अभिमान को जान लिया और ये सोचकर कि यदि देवताओं में ये अभिमान बना रहा तो उनका पतन हो जाएगा, इसीलिए उनका अभिमान मिटाने के लिए वो एक दिव्य यक्ष के रूप में देवताओं के सामने प्रकट हो गए। देवता इस यक्ष को देखकर पहचान नहीं सके कि ये कौन है। उन्होंने अग्नि देवता से कहा, आप संसार के सारे पदार्थों को जानते हैं, आप इसका पता लगाइए ये यक्ष कौन है। अग्नि देवता को अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व था। उन्होंने कहा, अच्छा मैं अभी पता लगाता हूं। वे उसी समय यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? अग्नि देव ने सोचा, मुझे तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन इसमें क्यों नहीं पहचाना। अग्निदेव ने तमक कर उत्तर दिया, मैं सुप्रसिद्ध अग्निदेव हूं। यक्ष ने फिर पूछा, अच्छा ये तो बताइए आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं। अग्निदेव बड़े अभिमान से बोले, मैं चाहूं तो इस सारे संसार को जलाकर राख का ढेर कर दूं। इसे सुनकर यक्ष ने घास का एक सूखा तिनका उनके सामने रखकर कहा, आप तो सभी को जला सकते हैं, थोड़ी शक्ति लगाकर इस तिनको को ही जला दीजिए। अग्निदेव ने इस छोटे से काम को करना अपना अपमान समझा, फिर भी वे उस तिनके के पास गए और उसे जलाना चाहा, लेकिन वो घास का तिनका नहीं जला। तब तो क्रोध में आकर उन्होंने उसे जलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो तिनका नहीं जला तो नहीं जला। तब तो अग्निदेव का सिर लज्जा से झुक गया और वे चुपचाप वापस आकर देवताओं से बोले, मैं तो नहीं जान सका कि ये यक्ष कौन है। देवताओं ने देखा कि अग्निदेव इस यक्ष के रहस्य को नहीं जान सके तो उन्होंने वायुदेव को चुना और उनसे कहा कि आप जाकर इस यक्ष का पता लगाइए। वायुदेव को भी अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व था। उन्होंने कहा, अच्छा मैं अभी पता लगा कर आता हूं। वे तुरंत यक्ष के पास जा पहुंचे। यक्ष ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? वायुदेव ने उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूं। यक्ष ने कहा, अच्छा आप वायुदेव हैं, पर यह तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है। वायुदेव ने बड़े गर्व के साथ उत्तर दिया, मैं चाहूं तो सारी पृथ्वी को उठा लूं और जिधर चाहूं पल भर में उड़ा दूं। यक्ष ने उनके सामने भी घास का वही सूखा तिनका रख दिया और कहा, आप तो बड़े बड़े पहाड़ों को उड़ा सकते हैं, तो इस छोटे से सूखे तिनको को उड़ा दीजिए। वायुदेव उस तिनके पास गए और उसे उड़ाना चाहा, पर वो तिनका अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में भरकर अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन तिनका था कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। वायुदेव हार गए। वे सिर झुकाते हुए देवताओं के पास लौट आए और बोले, मैं भी नहीं पहचान सका कि ये यक्ष कौन है। देवताओं ने तब इंद्रदेव से प्रार्थना की कि आप ही इस यक्ष का पता लगाइए। इंद्र ने कहा, अच्छा मैं जाता हूं। वे यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने जान लिया कि इंद्र सब प्रकार से योग्य है, ब्रह्म का ज्ञान पाने के अधिकारी हैं। यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र वहीं खड़े रहे, लौटे नहीं। उन्होंने देखा कि जहां यक्ष खड़े थे वहां हिमालय कुमारी उमा प्रकट हो गई हैं। इंद्र ने नम्रतापूर्वक उनसे कहा, आपको तो सब बातों का पता है, कृपा कर मुझे बताइए कि ये यक्ष कौन है। भगवती उमा ने कहा, जिन यक्ष को तुमने देखा है वे पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की है वो उस पर ब्रह्म की शक्ति से ही की है, लेकिन तुम सोचते हो कि तुम अपनी ही शक्ति से विजयी हुए हो। उन्होंने तुम्हारे इस मिथ्या अभिमान को चूर करने के लिए ही यक्ष के रूप में आकर अग्नि और वायु देव को यह बता दिया कि उनमें जो शक्ति है वो परब्रह्म की ही शक्ति है। वे अपनी शक्ति से तो एक तिनके को भी नहीं जला सकते, न उड़ा सकते हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए। घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। वो परब्रह्म परमात्मा जो सबसे महान है, उस एक ही शक्ति से सबको शक्ति प्राप्त होती है।
1: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे कैलाश पचौरी का आलेख, वाचन स्वर था सुरेंद्र तिवारी का। एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। 6:35 हुए हैं, समय है मानस गान का। तो आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय।

भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राजतिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राजतिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी बलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ अभी आप सुन रहे थे। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर था वाणी जयराम का और आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के लिए संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। कार्यक्रम विवरण के तहत आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे आज के कुछ प्रमुख प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद यानी कि सुबह 6:50 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट होगा हर रोज की तरह सुबह 7:20 पर। 8:00 समाचार प्रभात हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:15 पर और 8:30 का समय होगा कार्यक्रम महिला जगत का। 9:00 से लेकर 10:00 तक आप आनंद ले सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का। सुबह 10:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करते हैं जिले की चिट्ठी। आज रविवार का दिन है तो सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत। सुबह 11:00 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात साझा करेंगे देश की जनता के साथ। मन की बात ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 11:30 से विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे 2:10 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से और 2:15 पर समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 2:30 से जारी रहेगा अनुप्रसारण विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का। शाम 5:00 युवा श्रोता सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर। गुड इवनिंग बालाघाट आप सुनेंगे शाम 6:00 और शाम 6:30 पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विशेष रेडियो रिपोर्ट आप सुन सकेंगे। आलेख और संकलन रविशंकर दुबे का है, प्रस्तुति है कुंवर विक्रम सिंह की। 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और शाम 7:10 पर प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। हेलो ग्राम सभा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे सुबह 7:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:00 और रात 8:15 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की। पॉप म्यूजिक का समय होगा रात 8:30 और रात 9:45 समाचार संध्या हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:15 पर स्पॉटलाइट समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। 9:30 से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। रात 10:30 पर होगा सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। 11:05 पर हिंदी में समाचार और 11:10 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। तो ये थी जानकारी हमारे आज के कुछ प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है FM बैंड 101.3 MHz पर। 6:50 हुए हैं, लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम की पहली पेशकश है फिल्म थोड़ी सी बेवकूफ।

वफाई से। गुलजार के बोल हैं, आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, संगीत खय्याम ने तैयार किया है, तो पेश है फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये गीत।

किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ में शान फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल थे, आर डी बर्मन का संगीत। वारिस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ में। वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा है और उत्तम जगदीश का संगीत है।

0: लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ में ये था वारिस फिल्म का गीत। वर्मा मलिक के बोल थे और उत्तम जगदीश का संगीत था। इसी के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। 7:10 होने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

0: तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेश में नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान और रीवा में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता शुरू। 144 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तरीय कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे रोड शो और आम सभा में भाग लेकर क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। डॉ. यादव शुजालपुर में जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किसानों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिक की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। श्री कुमार ने कहा कि असम, केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान उच्च स्तर की स्पर्धा देखी गई। उन्होंने देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में अपने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भी पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का आंदोलन है।
3: हमारे देश की इतिहास में हिंदी पत्रकारिता का एक अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक जी से, महान पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी जी से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी से, चाहे अभ्युदय हो, चाहे उदंत मार्तंड हो, चाहे प्रताप हो, अनेक अनेक संस्करणों से इस देश को जागरूक करने में हिंदी पत्रकारिता का एक अहम योगदान रहा है।
0: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। नर्मदापुरम जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। आज विश्व

दिया जाएगा। अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विद्यार्थियों को तंबाकू एवं नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़कर नशा मुक्त वातावरण तैयार करना है। आगर मालवा में जिला स्तरीय नशा मुक्ति रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला पर आधारित रैली कंपनी गार्डन से प्रारंभ होकर जिला पंचायत परिसर पर समाप्त होगी। रीवा में 20 वर्षों के बाद राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की 114 इवेंट में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के मिहिरसेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का कल शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल समरसता व भाईचारे का संदेश देते हैं। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि तरणताल के डाइविंग पुल का नाम कैप्टन बजरंगी प्रसाद के नाम पर होगा। श्री शुक्ल ने तरणताल में नए स्प्रिंग बोर्ड लगाए जाने के भी निर्देश दिए। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि इस प्रतियोगिता से नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी और देश व प्रदेश में अपना नाम रोशन करेंगी। अब बात मौसम की। नौतपा के बीच राज्य में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। राजधानी भोपाल में देर रात तेज आंधी चली, जिसके कारण जगह जगह पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में रातें भी बेहद गर्म रहीं। इस दौरान नरसिंहपुर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रदेश में आंधी तूफान की स्थिति निर्मित हो सकती है। खंडवा जिले में बादल छाए रहने से कई क्षेत्रों में बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। छतरपुर जिले में 2 महीने में पुलिस हिरासत और थानों से जुड़े घटनाक्रमों में 4 लोगों की मौत के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष दीक्षित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन और जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सरकार, पुलिस महानिदेशक, सागर रेंज के आईजी, छतरपुर एसपी समेत संबंधित थाना प्रभारियों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर मुनिवरम मुरुगेसन की जमानत याचिका को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अहिल्या उत्सव 2026 में आज इंदौर में सांस्कृतिक आयोजन होंगे। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पंचायत स्तर पर प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को कैंप लगाकर जन समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। गुना में 3 दिवसीय दिव्यांगजन जागरूकता एवं समावेशी अभियान योजना कार्यशाला का कल समापन हुआ। भोपाल के भारत भवन में 7 दिवसीय सदा नीरा समागम के 4थे दिन कल शाम बाल नाटक मिराज मेलोडीज का आयोजन किया गया। सागर पुलिस प्रशिक्षण शाला में 5वें नव आरक्षक बुनियादी सत्र 2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थी की परेड संपन्न हुई और बैतूल में आरओ 2026 ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन कल हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।
1: नमस्कार बालाघाट।

नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कार्यक्रम का आज का ये अंक लेकर हाजिर हूँ मैं रजनी तिवारी। कल तक जो गर्मी है, धूप की जो तपिश है, वो अपने चरम पर थी। तापमान है कि गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन तो दिन, रात में भी ठंडक की कहीं कोई आस और उम्मीद नहीं थी। श्रोताओं, हम मई के आखिरी दिन में हैं, नवतपा के दो दिन और शेष हैं। कल की रिमझिम फुहारों ने कुछ तो तापमान में गिरावट ज़रूर लाई है, लेकिन इसे ये न समझें कि बस अब बारिश आ चुकी है। गर्मी आज भी उतनी ही रहने वाली है, सूरज उतना ही तपने वाला है। आंखों में बारिश की उम्मीद ज़रूर है, लेकिन उसे अभी पूरा होने में 15 से 20 दिनों का समय ज़रूर लगेगा। तो उसके बाद फिर न केवल मौसम बल्कि प्रकृति भी शीतल करेगी हमारे तन को और मन को भी। लेकिन तब तक ज़रूरी है कि हम इस गर्मी से अपना बचाव करें, धूप से अपना बचाव करें, अपना ध्यान रखें, हल्का भोजन करें, कोशिश करें कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी न हो तो धूप में न निकलें, और यदि धूप में बाहर जाना कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो तो धूप से बचने के सभी उपायों का ध्यान रखें, पानी पीते रहें। अभी खुद को स्वस्थ रखेंगे दोस्तों, तभी तो आगे आने वाले मौसम का आनंद ले सकेंगे। छुट्टियों का वक्त चल रहा है तो हम सभी कहीं ना कहीं घूम फिर रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो आनंद अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा, सावधानी और बचाव भी अपनी जगह पर है। तो बस कोशिश करें कि अपना और अपने अपनों का ध्यान रखें, और फिलहाल कार्यक्रम में आनंद लें इस गीत का।

साथियों, चिंतन करते हैं आज के विचार पर। अब्राहम लिंकन का विचार है, अगर आपके पास एक सही और समझदार हमसफर है तो जीवन की आधी मुश्किलें वैसे ही खत्म हो जाती है। वह जीवन के संघर्षों में आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। साथियों, सफर जीवन का हो या फिर चंद घंटों का, यदि आपसी समझ और सदाचार के साथ साथी का साथ निभाया जाए तो सफर यादगार भी बन जाता है और मजेदार भी। ये विचार इसलिए आया कि आप सभी की तरह हमने भी पिछले दिनों यात्राएं की, छुट्टियां मनाई और वाकई सहयात्रियों के सहयोग और व्यवहार ने यात्रा को यादगार बना दिया। तो हमें भी ऐसा ही व्यवहार अपनाना चाहिए, करना चाहिए, जिसे हमारे कारण भी किसी की यात्रा मजेदार हो, सफर आसान हो जाए, जीवन का हो या यात्रा का।

0: ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर लेकर आया है एक खास योजना आपके लिए।
1: अपने घर, दफ्तर और कंपनी की छत पर सोलर पैनल लगाएं
0: और ग्रीन एनर्जी पाएं
1: 30 साल तक की वारंटी के साथ, घर बैठे बेहद कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा।
0: जिले का एकमात्र MNRE दिल्ली अवार्डेड सोलर हाउस,
1: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं
0: और चले आएं ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर, काली पुतली चौक, मार्केटिंग सोसाइटी के ऊपर, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 8770854830,
0: 7581938175।
2: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
3: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTEC कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
2: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
3: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
4: आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट, और कार्यक्रम में अब क्रम है कि हम जानें आज की तारीख से जुड़ा इतिहास। आज है 31

0: वर्ष 1774 में इसी तारीख पर भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया था। 1867 में बंबई में प्रार्थना सभा की स्थापना हुई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। 31 मई वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किया गया था। वर्ष 1959 में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई थी। इसी तारीख पर वर्ष 1964 में बंबई में इलेक्ट्रिक ट्रॉम अंतिम बार चलाई गई थी। 31 मई वर्ष 1994 को दक्षिण अफ्रीका गुट निरपेक्ष आंदोलन का 109वां सदस्य राष्ट्र बना था। बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के नए प्रधानमंत्री बने थे 31 मई वर्ष 1996 में। वर्ष 2001 में आज ही की तारीख पर मानवाधिकार आयुक्त रॉबिन्सन का कार्यकाल बढ़ा था और इसी तारीख पर सोवियत पूर्व सोवियत देशों का राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन मिस्र बेलारूस में संपन्न हुआ था। वर्ष 2007 में इसी तारीख पर सेप ब्लैटर तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने थे। वर्ष 2010 में आज ही की तारीख में भारत में मान्यता प्राप्त हर निजी विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया था। वर्ष 2010 में इसी तारीख पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल से बैंक में बचत खाता धारकों के ब्याज की गणना दैनिक आधार पर होनी थी, जो कि अब तक ब्याज की गणना बचत बैंक खाते में महीने की 10 तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक उपलब्ध न्यूनतम राशि के आधार पर की जाती थी। ये बदलाव हुआ था। बात करें आज की तारीख में जन्म लेने वालों की, तो इनमें शामिल हैं वर्ष 1577 में मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूर जहां का जन्म हुआ था। एब्बे फारिया, जो कि दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सम्मोहन की कला को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था, इनका जन्म हुआ था 31 मई वर्ष 1756 में। मराठी रंगमंच में क्रांति लाने वाले प्रसिद्ध नाटककार अण्णा साहेब किर्लोस्कर का जन्म हुआ था 31 मई को वर्ष 1843 में। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ राजीव चंद्रशेखर का जन्म हुआ था 31 मई को वर्ष 1964 में। आउटलुक पत्रिका के संस्थापक और प्रसिद्ध पत्रकार विनोद मेहता का जन्म हुआ था 31 मई को वर्ष 1942 में। 31 मई वर्ष 1927 में जन्म हुआ था भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक वनराज भाटिया का। साथ ही 1925 में जन्म हुआ था हिंदी फिल्मों में शीर्ष निर्देशक निर्माणकर्ता और पटकथाकारों में से एक राज खोसला का। आज की तारीख में दुनिया को अलविदा कहने वालों में शामिल हैं समाज सुधारक और लेखक संत राम बी ए। वर्ष 1988 में 31 मई को इनका निधन हुआ था। साथ ही इसी तारीख पर वर्ष 1988 में ही भारत के प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र का निधन हुआ था। वर्ष 2003 में अंतिम सांसें ली थी प्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास ने। अंग्रेजी और मलयालम की प्रसिद्ध लेखिका कमला दास का निधन हुआ था 31 मई को वर्ष 2009 में। और 31 मई वर्ष 2022 को दुनिया को अलविदा कह गए थे प्रसिद्ध पार्श्व गायक के। साथ ही 31 मई की तारीख को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में आज की तारीख को मनाया जाता है। इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं पूर्व व्याख्याता श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं उनसे ली गई ये भेंटवार्ता।
1: मैं भी जब छोटी थी तो भी मैंने देखा था और अपने पिताजी से मैंने पूछा था कि ये बीड़ी सिगरेट वाले पीने वालों के लिए कोई कानून नहीं है क्या, तो उन्होंने मुझे बताया था, बचपन से मुझे पता है कि बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, नियम बने हुए हैं और उसको फॉलो भी किया जा रहा है। तो धीरे धीरे समय के साथ मैंने देखा कि ये बहुत चीजें कंट्रोल हुई और उसको मैंने पढ़ा भी कि पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना, टोबैको खाना, थूकना, ये सब मना है। और अब मैं मार्क कर रही हूँ कि समय के साथ साथ यदि उसका कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है तो ये आदत बहुत बढ़ती जा रही है। पहले मैं भी टोक देती थी ट्रेन में, रिक्शे वाले पीते थे या और कोई पब्लिक प्लेस पर पीता था तो उसके लिए, या पब्लिक प्लेस पर नहीं भी हो तो आज की डेट में ये आदत बच्चों में बहुत ज्यादा पाई जा रही है, जिसको हम लोगों को कंट्रोल करना है और हमारा फर्ज बनता है बड़े होने का कि हम एज अभिभावक, पेरेंट या जो भी पड़े हैं वो बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं और कहां

आएंगे, उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, उनको कैसे बहलाकर इन चीजों से निकालना है, उसको रोकी। आज के समय में सारे पेरेंट्स ज्यादातर जॉब में हैं, मदर्स भी वर्किंग हैं, कहीं कहीं पर इन सब का हमें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो इतना लंबा जॉब होता है कि बच्चों के लिए समय नहीं मिलता, और जो हेल्पर या सर्वेंट रखते हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों ने सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रखे हैं अपने घरों में जो जॉब करते हैं, तो उसका फायदा उठाते हैं, वो देखकर अपने मोबाइल में पूरी लोकेशन और सीन वीन देखते रहते हैं। पर ठीक है, नौकरी भी कहीं कहीं जरूरी है, लेकिन फिर भी हम उसको कैसे कंट्रोल करें कि हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकें। अब ये बात आती है कि 21वीं सदी में भारत विश्व में किस नजरिए से देखा जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि सारे विश्व की नजर तो भारत पर ही है। भारत एक बहुत ही आगे बढ़ने वाला अग्रणी देश है, जो हर मामले में आगे बढ़ रहा है। पुरातन समय से हम लोग मेडिटेशन और योगा के लिए बहुत ही प्रचलित है, जाने जाते हैं हमारे वेद उपनिषद में भी, और उसी से हमें अच्छा आचरण और अच्छी आदतें मिलती हैं। इन्हीं में की एक बुरी आदत जो तंबाकू की है, वो चली तो पुराने समय से आ रही है, लेकिन अभी ये नए रूप में बच्चों में युवाओं में देखी जा रही है। और शुरू कैसे होती है कि छोटी छोटी कहीं टॉफी, कहीं वो गुटखा, पान तंबाकू के छोटे छोटे पाउच, उसके कुछ और नाम बदल कर भी रखे जाते होंगे, हो सकता है। पहले ये ज्यादातर दुकानें स्कूलों के पास रहती थी, और वहां से फिर वो बड़े नशे में बदल जाती हैं। आज के समय का तो मैं आपको क्या बताऊं, इतना खतरनाक हाल है कि कौन सी ई सिगरेट और कौन से ई टाइप के नशे, माने ये भी एक अलग बहुत कठिन सा समय हो गया है कि हम इससे कैसे उभर के आएंगे। और इसके लिए हमें बहुत बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी अपने बच्चों और युवाओं को सुरक्षित करने के लिए। तो नजर तो सबकी भारत पर रहती है, पर भारत के जो अग्रणी लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो प्रचलित हैं, बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं, डिग्निटीज हैं, उनको भी चाहिए कि थोड़ा इस विषय में, जैसे वो और चीजों के एडवर्टाइजमेंट देते हैं, विज्ञापन देते हैं, वो इधर आए और दें। और ये भी आप देखिएगा कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, उस पे लिखा रहता है लेकिन वो बिकती रहती है, शराब बिकती रहती है, मगर क्या किया जाए वो तो एक अलग नियम है। पर हमें इस बात का हमेशा अवलोकन करते रहना है कि बच्चे के व्यवहार में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, उसको मापदंड करते हुए हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्यों ये ऐसा कर रहा है। और इसके लिए सबसे पहला स्थान है स्कूल। शिक्षा की व्यापकता के साथ तंबाकू का प्रचलन समाज पर क्या असर डाल रहा है, ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बातें हैं सिर्फ किताबों से नहीं होती। हम सभी ने देखा है, आपने भी अनुभव किया है कि किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमारे जीवन में रहता है, उसको हमें अपने साथ उतारना पड़ता है। तो सबसे पहला जो टीचर है माँ, या उसके बाद स्कूल के शिक्षक, ये उनको हमेशा वॉच करे। क्योंकि जब मैं शिक्षिका थी तो मैंने भी वॉच किया था कि बच्चों में ऐसी आदत धीरे धीरे पनपने लगती है। दूसरे पीयर प्रेशर, वो बोलते हैं अरे तू डरता है अपनी मम्मी से, जरा सा तंबाकू चट के देख, या जरा सा सिगरेट का एक कश तो भर के देख। अब इन सब का असर क्या हो रहा है बच्चे पर, धीरे धीरे उसको लत लग जाती है। और ये सब बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है, मैं तो मानती हूँ जितना ज्यादा मीडिया एक्सपोज हो गया है, अपने यहाँ इतना एक्सपोजर है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और उस पे सब कुछ खुला हुआ है। आजकल नए नए निकल रहे हैं, AI है, ChatGPT है, जाने क्या क्या और आ गया है, जिसका बच्चे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें एज अ पेरेंट भी नहीं पता चल पा रहा कि वो क्या क्या देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, और हमें अपने बच्चों को बहुत समय देना

0: बनेगा, हमारी नौकरी ऐसी किस काम की जब हम अपने बच्चों को नहीं बना पाए, तो बच्चों को समय दीजिए, उसके साथ उनको अच्छी अच्छी आदत डालिए, जैसे सौंफ पाचक होती है, लौंग सर्दी खांसी से बचाती है, इलायची ठंडी ठंडक देती है, स्वाद मुका बढ़ाती है, तो इन सब चीजों को हमेशा अपने साथ में रखते हुए तो उनका ध्यान कहीं भटकेगा नहीं, वो कहीं ऐसे आकर्षित नहीं होंगे कि जो उनका एक फ्रेंड सर्कल है। या उसके साथ साथ हम ये कर सकते हैं कि अपने जो बच्चों के फ्रेंड सर्कल हैं उनसे हमेशा दोस्ती बनाए रखें और उनके साथ साथ देखें जाकर कि ये बच्चों की तो कहीं कोई गलत आदत नहीं है, इस प्रकार से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी तो इस साल की 2026 की ये थीम ही है कि टोबैको अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको, यानी इस आकर्षण का पर्दाफाश करके हमें इस लत से कैसे मुकाबला करना है, इसके लिए हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। देखिए बच्चे भोले होते हैं, अनजान होते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि वो किस गलत दिशा में जा रहे हैं, बिगाड़ता उनको बड़ा ही है, तो इसलिए हमें ये प्राइमरी स्टेज पर ये काम करना है जो कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स और स्कूल की। कोई भी ऐसी अजीब टाइप की दुकान है, मैंने देखा है कई बार चाय की दुकान के पास या पान वाले की दुकान के पास अक्सर इस प्रकार की चीजें रहती हैं जो कई बार धीरे से बच्चों को पकड़ा देता है, हालांकि वो भी एक इंसान है लेकिन वो अपना सामान बेचने के लिए वो बच्चों को पकड़ा देता है और वो एक बार खाते हैं तो उन्हें उसकी लत लग जाती है। हमें इन चीजों को रोकना है। मॉरल एजुकेशन के स्कूलों में पीरियड लगते हैं जिसमें नैतिक शिक्षा उनको दी जाती है और खुद हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम हर इंसान, नहीं तो एक ही अच्छी या बुरी आदत जो भी कह लीजिए, मैं तो बाजार में भी टोकती रहती हूँ हमेशा से, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी हो, कि भाई ये खा रहे हैं तंबाकू तो ऐसे क्यों थूक रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। ठीक है कभी बहस हो भी जाती है लेकिन पहल तो हमको करनी है ना। मेरा तो कहना है कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस पर रेगुलर लेक्चर्स होने चाहिए, जैसे गुड टच बैड टच अपने ऐसे होते भी रहते हैं, और अपने जो आइडियल्स हैं, जो बड़े बड़े नेता अभिनेता स्टार्स या जो बच्चे जिनके बड़े फैन होते हैं कि उनको देख रहे हैं टीवी पर, तो वो लोग भी यदि इस प्रकार का प्रचार करें तो उससे उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है क्योंकि वो उनको फॉलो करते हैं। फॉलोअर्स देखिए कितनी जल्दी आ जाते हैं आजकल, अपन करंट में भी कोई न्यूज पढ़ेंगे तो अगर इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ऐसे लोगों का कहना वो ज्यादा सुनते हैं।
1: श्रोताओं ये थी पूर्व व्याख्याता श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जो आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हमें जानकारियां दे रही थी। आज जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं अनिल बिस्वास, इनकी पुण्यतिथि है। 7 जुलाई वर्ष 1914 को इनका जन्म हुआ था। अनिल कृष्ण विश्वास इनका पूरा नाम था, जो कि फिल्म इंडस्ट्रीज में अनिल बिस्वास के नाम से जाने गए। 1935 से 1965 तक अनिल बिस्वास संगीत निर्देशन और पार्श्व गायन से जुड़े रहे। इन्हें 12 वाद्य यंत्रों वाले पहले भारतीय ऑर्केस्ट्रा का निर्माण करने और भारतीय सिनेमा में ऑर्केस्ट्रल संगीत और सशक्त कोरस के प्रभाव को लाने का श्रेय दिया जाता है। 90 से अधिक उनकी फिल्मों में सबसे यादगार फिल्में थी रोटी, किस्मत, अनोखा प्यार, तराना, परदेसी, चार दिल चार राहें, हीर। वर्ष 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। 31 मई वर्ष 2003 को अनिल बिस्वास ने अंतिम सांसें ली थी। आइए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं उनकी फिल्म हीर का ये गीत सुनकर।

0: ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर लेकर आया है एक खास योजना आपके लिए।
1: अपने घर, दफ्तर और कंपनी की छत पर सोलर पैनल लगाएं
0: और ग्रीन एनर्जी पाएं
1: 30 साल तक की वारंटी के साथ, घर बैठे बेहद कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा।
0: जिले का एकमात्र MNRE दिल्ली अवार्डेड सोलर हाउस,
1: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं
0: और चले आएं ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर, काली पुतली चौक, मार्केटिंग सोसाइटी के ऊपर, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 8770854830,
0: 7581938175।
2: साथियों, आज हम याद कर रहे हैं भारतीय संगीत जगत के एक ऐसे सितारे जिनकी आवाज ने अनगिनत श्रोताओं के दिलों को छुआ। अपनी आखिरी प्रस्तुति के दौरान इनका निधन हो गया था और ये हैं कृष्ण कुमार कुन्नथ, जिन्हें हम केके के नाम से जानते हैं। केके ने अपने जीवन को संगीत के हर रंग से रंगा था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापन जिंगल्स से की थी और लगभग उन्होंने 3500 जिंगल्स गाए थे। इस दौरान उनकी आवाज़ की जो मधुरता थी, उनके आवाज़ का जो एक ख़ास मखमलीपन था, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और बॉलीवुड में पहला ब्रेक उन्हें मिला हम दिल दे चुके सनम इस फिल्म के गीत। आपको याद होगा, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, केके का ये पहला मशहूर गीत था और इस एक गीत ने उन्हें रातों रात मशहूर बना दिया। उनकी आवाज़ की सादगी

पर गहराई ने श्रोताओं के दिल के कोने को छुआ और उसके बाद तो बस केके ने कभी भी रुके नहीं, केके गाते ही रहे और अपने जीवन के अंतिम दिनों तक गाते रहे। तो आइए उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं ओम शांति ओम फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब हमारा कार्यक्रम है अपने अंतिम पड़ाव पर। तो चलते चलते आपको बता दें कि आज का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आरएल कटरे और आशीष रांगडाले के तकनीकी सहयोग से। परिकल्पना और संयोजन धीरज कुमार का था, प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की। कार्यक्रम लेकर मैं आज आपके साथ थी रजनी तिवारी। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें, अपना और अपने अपनों का ध्यान रखें। हमारी पूरी टीम को दें कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

0: कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बालाघाट केंद्र है। सुबह के 8 बजने जा रहे हैं समाचार। कुछ ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा।

0: इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र

0: उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क। उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गिब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों

0: सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहली पेशकश है अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज़ में

कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश थी अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की आवाज़ में। इसी गीत के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 101.3 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: महिला जगत कार्यक्रम में सभी श्रोता सखियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज आपके कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं मधु तिवारी और हमारी सहयोगी सखी हैं रजनी तिवारी। तो स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। रजनी, मौसम अपने पूरे तेवर दिखा रहे हैं, है ना? आपको तो मेरी आवाज भी लग रही होगी
1: कि मौसम का असर है जी,
0: है ना? तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और जैसे कल तो आपने देखा ही कि हमारा पूरा शहर और आसपास का क्षेत्र कितने बड़े तूफान से गुजरा और हवा, तूफान, तेज बारिश ने सभी को परेशानी में डाल दिया।
1: बिल्कुल, और जब ऐसी चीजें हमारे जीवन में घटती हैं ना, तो मतलब जैसे आंधी तूफान जिस तरह से आ रहा था, बहुत देर तक बिजली कटी रही और काफी परेशान हुए क्योंकि काफी धूल भरी आंधी थी। जो लोग घरों से बाहर थे वो काफी परेशान थे, अगर बच्चे घर से बाहर थे तो जो मम्मियां हैं वो परेशान थी कि बच्चे घर तक कैसे लौटेंगे। तो वाकई मौसम बहुत ही खराब सा था और जगह जगह पेड़ भी गिर रहे थे, धराशायी हो रहे थे। तो अक्सर जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं मधु जी हमारे जीवन में, तो फिर हम ये सोचने लगते हैं ओहो भगवान ये क्या कर रहे हैं और कितना परेशान हो जाते हैं ना। जबकि अगर हम सीधी साधारण सी बात देखें और इसके वैज्ञानिक और तकनीकी पहलू पर अगर गौर करें तो इसका सीधा संबंध हमारे रहन सहन और हमारी जीवन शैली से होता है।
0: बिल्कुल रजनी, हम अपने थोड़े से स्वार्थ के पीछे पेड़, पर्वत, नदियों को बेतरतीबी से मिटा रहे हैं, जंगल खत्म करके चौड़ी बड़ी सड़कें आज बन गई हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को हमने काट दिया है, नदियों पर बड़े बड़े पुल और डैम बना दिए हैं, उनकी जो नेचुरल धारा है बहने की वो हमने सब खत्म कर दी हैं।

0: बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि आपका कहना है कि जो प्रकृति से और जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसका दोष हम दे रहे हैं मौसम को या फिर हम भगवान को याद कर रहे हैं, कहीं भी हमारे जहन में ये ख्याल नहीं आता कि इन सबके दोषी कहीं ना कहीं हम खुद हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जैसे हम बात करते हैं गर्मी की कि गर्मी बहुत बढ़ रही है, हम जिक्र करते सुनते हैं बड़े बुजुर्गों को कि पहले तो सूरज की तपिश होती थी पर वो इस कदर नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं उसका कारण है कि ये जो कंक्रीट की सड़कें हैं और उन सड़कों के किनारों पर जो कंक्रीट के जंगल हमने खड़े किए हुए हैं, वही सूरज की तपिश को अवशोषित कर लेते हैं और फिर जैसे ही रात होती है वो जो है वो ऊष्मा के रूप में निकलती है और हमें दिन के साथ साथ रात भी उतनी ही गर्म लगती है।
1: बिल्कुल रजनी, हमारा जीवन आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। सादा जीवन तो जैसे हमने खत्म ही कर दिया है। इसलिए बहनों, हमें अपने आसपास थोड़ा माहौल बदलना चाहिए, पर्यावरण का हम ध्यान रखें, घर के आसपास जो पेड़ बचे हैं उनकी हम रक्षा करें, नए पेड़ लगाएं, नदियों को गंदा ना करें, पानी की कीमत जानें, उसे सुरक्षित रखें। अपने घर बनाएं तो उसमें एक छोटा सा आंगन जरूर बनाएं और उसमें एक दो पेड़ लगाएं, तभी हमारा जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगा और हमारे जीवन जो है वो एक प्यार का गीत बन जाएगा।

0: बहनों, कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं और क्रम है हमारी भेंटवार्ता का, तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: जी
2: नमस्कार मैम,
1: आज आप हमारे साथ आई हमारे स्टूडियो में जी। हमारी बहनों को आप अपने बारे में बताएं।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका जी। जो आपने मुझे इनवाइट किया। मैं श्रीमती सरिता केवल सोनीकर, मैं सेकंड बार पार्षद बनी हूँ।
1: अच्छा।
2: और महिला बाल विकास एवं शिक्षा विभाग की सभापति हूँ वर्तमान में
1: जी। आप नगर पालिका में हैं और आपके पास महिला बाल विकास की आप सभापति हैं
2: जी,
1: तो आपके अंडर में कौन कौन से काम आते हैं?
2: देखिए मैं महिला बाल विकास की सभापति हूँ, तो सभापति होने के नाते जो हमारी नगर पालिका से हाँ। जो नगर पालिका के थ्रू जो स्कूल संचालित होते हैं
1: हाँ।
2: उनकी देखभाल करना
1: हाँ।
2: और वहाँ से जितने बच्चे अच्छे से अच्छे अंक लेकर के आते हैं तो नगर पालिका उनको सम्मानित भी करती है
1: हाँ।
2: और हम चाहते हैं कि नगर पालिका के द्वारा जो स्कूल संचालित हो रहे हैं, गरीब बच्चे जो वहाँ पर पढ़ते हैं शिक्षा ग्रहण करते हैं
1: हाँ।
2: तो उस स्कूल का स्टाफ अच्छा हो ताकि उनकी देखभाल हो, और जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिन माता पिता अपने बच्चों का फीस नहीं दे सकती है, तो वह स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो वहाँ से अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ करके निकलते हैं और अच्छे अच्छे पद पर स्थापित होकर अच्छी अच्छी पोस्ट पे होकर बाहर चयनित किए जाते हैं।
1: अच्छा, आपने ये जो कहा कि वहाँ जो गरीब बच्चे हैं और फीस नहीं दे पाते हैं, तो हमने भी सुना है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे चलते हैं कि बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो जैसे आपने फीस की बात करी, इसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं?
2: इसके अलावा मैडम हम लोग बुक्स कॉपीज वगैरह देते हैं। यदि बच्चा अच्छा परसेंटेज बना रहा है, फर्स्ट डिविजन आ रहा है, मेरिट लिस्ट में आ रहा है, तो हमने उनके लिए लैपटॉप की सुविधा भी उपलब्ध करवाई थी।
1: अच्छा,
2: जो हमने काफी बच्चों को दे चुके हैं लैपटॉप नगर पालिका की तरफ।
1: अच्छा, से ये आप जो लैपटॉप देती हैं, कौन सी क्लास के बच्चों को आप?
2: ये 10th बोर्ड और 12th।
1: लेकिन उसका क्राइटेरिया जो है वो क्या होता है?
2: क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं मैडम, मिनिमम क्या है वहाँ पर 450 बच्चे लगभग पढ़ते हैं है ना, तो हमने बच्चों को इस तरह से पुरस्कृत करके उनको एक अच्छा गाइडलाइन मिलता है कि हमें पुरस्कृत किया जाता है तो हम अच्छे नंबर से पास हों, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर। हम शिक्षा विभाग की सभापति होने के नाते मैं हर महीने या 2-3 महीने में वहाँ की बैठकें लेती हूँ और उन टीचरों से भी यही कहती हूँ कि ये बच्चे गरीब हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इनको अच्छे से अच्छे सुविधा दें और पूरा अच्छे से अच्छे इनको एजुकेशन दे पाए, इसलिए आप पूरे पीरियड इनके लें और इनको ऐसा ना लगे कि हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनके लिए वो चाहती हैं कि अच्छे मार्क्स लाएंगे तो जैसे होता है ना कि आश्वासन दिए जाते हैं घर में कि बेटा आप परसेंटेज अच्छा बनाओगे, मेरी लिस्ट में आओगे तो हम आपके लिए घड़ी खरीदेंगे या

0: और कुछ लैपटॉप खरीदेंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे। तो ऐसे ही नगर पालिका उनको कहती है कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो हम आपको इस टाइप से पुरस्कृत करेंगे। तो बच्चे स्वाभाविक है कि खुश हो जाते हैं और हमको ये मिलेगा करके वो आगे बढ़ने की और ज्यादा अच्छे से अच्छा पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं।
1: बिल्कुल, मतलब पूरा उत्साह उसमें भर देती है कि आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई करिए, आपको बहुत सारे इनाम मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छा काम है। इसके अलावा और आप क्या क्या काम देखती है नगर पालिका के? आप पार्षद हैं और आप अपने वार्ड में जाती होंगी, सभी पार्षदों से आप मिलती होंगी, तो और ऐसी कौन सी परेशानियां आप देखती हैं किसमें हैं और उन्हें आप दूर करना चाहती हैं? या आप लोगों ने ऐसे कुछ काम किए होंगे कि ये परेशानी थी हमारे वार्ड में तो हमने ये अच्छा काम किया है, तो ऐसे हमारे
0: देखिए हम जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद तो सबसे यानी कहना चाहिए कि सबसे कठिन पार्षद ही होता है और पार्षद ही सबसे ज्यादा मेहनत करता है बड़े बड़े नेता के तुल्य में, कि पार्षद एक एक घर तक जाता है, हर नगर पालिका की योजनाएं उन तक पहुंचाता है, लाभार्थियों तक संपर्क करके उनसे मिल करके सारी योजनाओं का लाभ ऊपर से नीचे तक जो भी योजनाएं चलती पार्षद के थ्रू ही वार्ड में जाकर के उनको बताया जाता है। तो पार्षद बनते हैं तो पार्षद का एक ही कर्तव्य होता है कि अपने वार्ड को सारी सुविधाएं सिद्ध करे, बिजली पानी शौचालय घर। तो हमने अपने वार्ड में, मेरा वार्ड छोटा सा है, करीब 1600-1700 का वोटर्स का वार्ड है, तो मैंने अपने वार्ड में नालियां का निर्माण किया पिछले पूर्व का पहले के कार्यकाल में, और नालियों पे ढक्कन लगवाया, आवास के जो घर मिल रहे थे तो मैंने 75 आवास के घर बनवाए अपने वार्ड में। अच्छा। और जगह ना होने के कारण अभी हमारे वार्ड में आंगनबाड़ी किराए से चलती है। अच्छा। तो मैं उसके पीछे लगी हूँ महिला बाल विकास के माध्यम से कि मेरे वार्ड में मेरे रहते 2 आंगनबाड़ी का निर्माण किया जाए, और मैं डेली अपने जनता के बीच में रहती हूँ, उनसे अटैच रहती हूँ ताकि किसी भी प्रकार की उनको मतलब सुविधा से उनको कमी ना हो। हाँ। हर सुविधा उनको मिले, हर योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे, घर घर पहुँचे, या मेरी सारी उम्मीदें उनके लिए है।
1: गर्मी का मौसम है, आप सभी से जुड़ी हुई हैं, तो हम चारों तरफ देखते हैं जैसे ही गर्मी आती है तो पानी की त्राही त्राही शुरू हो जाती है, कभी 2-2-3-3 दिन नल नहीं आ रहे हैं या नल आ रहे हैं तो बहुत गंदा पानी आता है, इन सब से जनता जूझती है
0: जी।
1: और गर्मी आती है तो ये सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, इनसे आप कैसे बचती हैं और आप क्या देख रही हैं, क्या पा रही वर्तमान में हमारे सुविधाएं हैं लोगों को या परेशान है लोग?
0: जी देखिए, हमारे पिछले कार्यकाल में लगभग 38 करोड़ की योजना नल जल की थी
1: जी,
0: जिनके माध्यम से हमने पूरे 33 वार्डों में यानी पूरे बालाघाट शहर में नई पाइपलाइन बिछाई
1: जी।
0: तो उसका पूरा कार्य भी हो चुका है, कहीं कहीं थोड़ा छूट गया है, तो उससे फोर्स अच्छा आता है, पानी भी अच्छा आता है, डेली दोनों टाइम पानी मिलता था। लेकिन जनता को क्या है, जितनी ज्यादा सुविधाएं दो ना उतना ही जनता उससे कहना चाहिए उसका व्यर्थ में उपयोग करते हैं
1: जी जी,
0: है ना। जैसे दोनों टाइम सुबह शाम पानी आता था, अभी ठंडी में तो ज्यादा जरूरत नहीं थी, अब गर्मी आ गई जल स्तर नीचे चला जाता है। इसलिए मैं जनता से भी अपील करूंगी कि जो हम पानी देते हैं, और हम भी यही चाहेंगे कि हमारी आम जनता को अच्छे से अच्छा पानी दिया जाए, हर घर जल हर घर नल के माध्यम से सभी घरों में नल जल की योजना है, हम उनको गर्मी में कैसे पानी दें तो उसमें एलम वगैरह का डाल करके हम उसको फिल्टर करवा के पूरे वार्ड में सप्लाई करते हैं, अच्छा से अच्छा हमारी जनता को पानी मिले ताकि स्वस्थ रहें निरोग रहें। इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से अपने नगर पालिका के माध्यम से अच्छा पानी उन तक जाए तो फिल्टर की भी व्यवस्था करके ये सब पानी पहुंचाते हैं। और पानी की बालाघाट शहर में कोई दिक्कतें नहीं, ना पहले थी ना अभी है ना होगी, भले ही हम गर्मी में उनको एक टाइम पानी देंगे लेकिन अच्छा पानी देंगे, साफ पानी देंगे। और हमारी यही अपील मैं जनता से भी करती हूँ कि वो गर्मी के समय में पानी का मिसयूज बिल्कुल ना करें, यदि नल खाली बहता है रोड़ों से बहता है तो टोटी लगाकर बंद कर दें, जितना जरूरत पानी है उतना ही वापरें, अन्यथा उनका व्यर्थ में पानी ना गवाएं।
1: आपने बहुत अच्छी बात कही कि पानी का व्यर्थ दुरुपयोग ना करें, क्योंकि पानी हर किसी को चाहिए। हम देखते हैं जिसके घर में 2-2-4-4 नल लगे हैं तो वो गाड़ियां पाइप से धोते हैं, घर पाइप से धोते हैं, और दूसरी जगह बाहर मोहल्ले में यदि एक नल लगा है तो वहाँ 25 लोग लाइन लगा के खड़े हैं। तो यदि आपके पास ज्यादा है तो आप 2-4 घर में आप पानी दे सकते हैं, ऐसे आप सुविधा बनाएं अपनी, क्योंकि पानी की जरूरत
0: जल ही जीवन है, सबकी जरूरत पड़ती है। और मैं तो ये भी चाहूंगी कि यदि किसी घर में किराएदार है या कुछ है तो वो पंप लगा करके पानी का यूज स्वयं के लिए ना करें, अतः सभी लोगों के लिए संतुष्ट करें पानी के माध्यम से कि हम अपने घर में ज्यादा भर रहे हैं, बाकी लोग तरस रहे हैं, हमारे घर में फोर्स से पानी आ रहा है, बगल वाले के यहाँ पानी ना आ रहा है, तो ऐसे क्या, हम सभी जनता हैं और हम सभी इस बालाघाट शहर के जागरूक

0: नागरिक हैं, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं जनता से भी यही चाहूंगी कि अपने लिए तो अपन अपनी सुविधा कराते हैं, बगल वाले का भी थोड़ा ध्यान रखें, पानी का मिसयूज ना करें।
1: कई बार हम देखते हैं कि घरों में मोटर लगा लेते हैं, तो एक के घर में यदि मोटर नहीं है तो सारा पैसा वहाँ खींचके चला जाता है,
0: बगल वाले के यहाँ पानी नहीं आता,
1: ध्यान रखें। और अब गर्मी जब पड़ती, बात करें कि आपने नलियां बनवा दी है, उस पर ढक्कन लगवा दिए, बहुत अच्छी बात है, इनमें मच्छर भी बहुत पनपते हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या क्या करते हैं?
0: इससे मैडम दवाइयों का छिड़काव कराते हैं हम लोग, जो नगर पालिका से जो गाड़ियां चलती है मच्छर की
1: जी।
0: तो वो गाड़ियां हम महीने में 2-3 बार सभी वार्डों में घुमा देते हैं। मच्छर कीड़े मकोड़े तो क्या है, उनको अपन जड़ से खत्म नहीं कर सकते, वो तो जितने मरेंगे उतने जीवित भी हो जाते हैं, है कि नहीं? ये तो प्रोसीजर चलती रहेगी, लेकिन हमारे माध्यम से, एक जनप्रतिनिधि होने के माध्यम से अपने वार्ड को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे साफ स्वस्थ रखें और नागरिकों तक कैसे अच्छी अच्छी चीजों की जानकारी दे पाए, उसकी सारी व्यवस्था हम नगर पालिका के माध्यम से मुहैया करवाते हैं।
1: बढ़िया, आपने बहुत अच्छी सभी को जानकारी दी और सभी को बहुत अच्छी सलाह भी दी है। और क्या कहना चाहेंगी अपनी बहनों से अपने माध्यम से?
0: मैं अपनी नगर की सभी बहनों से यही चाहती हूँ
1: जी
0: कि अपन जितना अच्छा अपने लिए सोचते हैं उतना ही पूरे नगर वासियों के लिए सोचे, तभी हमारा नगर स्वस्थ और स्वच्छ रहे। यही मेरी पूरी महिलाओं बहनों से और अपने नागरिक गणों से उम्मीद करती हूँ।
1: आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: रजनी, आज यानी 31 मई को हम मनाते हैं विश्व तम्बाकू निषेध दिवस। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को तम्बाकू के सेवन से होने वाले जानलेवा स्वास्थ्य जोखिमों जैसे कैंसर, फेफड़ों की बीमारी के प्रति जागरूक करना है।
1: जी हाँ, हर साल 31 मई को दुनिया भर में लाखों लोगों को एक ऐसे भयावह संकट को याद करने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं जो सालाना लगभग 80 लाख लोगों की जान ले लेता है। मतलब कितना बड़ा आंकड़ा है ये। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं है, ये इस बात को भी याद दिलाता है कि तंबाकू सेवन से लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अपनी जान जोखिम में डालकर इसे खाना ये बंद नहीं करते, और इसके कारण मधु जी सिर्फ एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता बल्कि पूरा परिवार और फिर पूरा समाज प्रभावित होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो रजनी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों ने राज्य 1987 में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाने की शुरुआत की, लोगों को जागरूक करके इनके उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को समझाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2007-08 में भारत के 21 राज्यों के 42 जिलों में पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था।
1: और जानकारी के लिए हम बता दें बहनों को कि इसे सबसे पहले राजस्थान के 2 जिलों जयपुर और झुंझुनू को इस परियोजना में सम्मिलित किया गया था, और फिर इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे कई राज्यों और जिलों में इस परियोजना का जो है उसको आगे बढ़ाया गया।
0: बिल्कुल। और रजनी, ये सब दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य हमारा होता है कि जो जानकार लोग हैं वो अपने आसपास यदि इस तरह की कुरीतियां हैं, गलत खान पान है लोगों का, तो आगे बढ़कर लोगों को इनके नुकसान के बारे में वो बताएं, उन्हें जागरूक करें, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ है तो सब बढ़िया, नहीं तो इसका हमारा प्यारा सजीवन इन गलत आदतों के कारण स्वाहा हो जाता है और पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है। तो अपने आसपास के लोगों को समझाएं कि तंबाकू, गुटखा, नशीले पदार्थों से बचकर रहें और अपना प्यारा सा जीवन सुखमय बनाएं।
1: बिल्कुल।
0: अपने जीवन के सुखद पलों को ना भूलें, उन्हें अपनी यादों में अमर बनाएं और गीत गाते गुनगुनाते रहें।

0: कार्यक्रम महिला जगत अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह है प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। 9 बजने जा रहे हैं, अब से लेकर 10 बजे तक आप आनंद लीजिए विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का।
1: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने एक ब्रेक के बाद आपको सुनवाए जाएंगे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बचना ए हसीनो इस फिल्म का गाना के और शिल्पा राव की आवाजों में अन्विता दत्त गुप्तन का लिखा हुआ गाना, विशाल शेखर का संगीत।

जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें सबसे पहले कुछ अल्पकालिक प्रभाव दिखने लगते हैं, जैसे कि हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्त में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, और इन तात्कालिक प्रभावों से हृदय प्रणाली पर दबाव पड़ता है और शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। कई धूम्रपान करने वाले लोगों में सहन शक्ति में कमी हो जाती है, लगातार खांसी और स्वाद और गंध की अनुभूति में भी कमी होने लगती है। ये बात हम आज कर रहे हैं क्योंकि आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं। आई एम कलाम फिल्म का गाना, के की आवाज में मानवेंद्र का लिखा हुआ गाना, अभिषेक राय का संगीत।

अब हम बात करते हैं तंबाकू सेवन के जो दीर्घकालिक परिणाम होते हैं उसके बारे में। फेफड़ों का कैंसर जो है वो तंबाकू से होने वाली सबसे मुख्य बीमारी है। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये भी जो बीमारियां हैं फेफड़ों की कार्यक्षमता को धीरे धीरे कम करती चली जाती है और उसके बाद नष्ट कर देती है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और तंबाकू जो लोग उपयोग करते हैं उनमें मुंह के कैंसर, मसूड़ों की बीमारी और दांतों की जो बीमारी है वो बहुत देखी जाती है। तो इन्हीं बातों के मद्देनज़र प्रतिवर्ष 31 मई को ये दिन मनाया जाता है। और अगर हम चाहें तो ये जो तंबाकू है इसके सेवन से बच सकते हैं और लाखों लोगों की जो जान इस के सेवन से चली जाती है उसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए आज नो टोबेको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम तंबाकू को यानी कि टोबेको को कहें नो और अपने स्वास्थ्य को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजरंगी भाईजान फिल्म का गाना के आवाज़ में कौसर मुनीर के बोल, संगीत है प्रीतम का।

इकबाल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास।

0: दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है।
1: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहां वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल बिस्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी बानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

0: सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।
1: जहां हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनार है।

सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल विश्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल बिस्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल बिस्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल बिस्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल बिस्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

बिना गा रही थी। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल विश्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल विश्वास के लिए कई गाने गाए।

दरअसल तलत महमूद और अनिल बिस्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश की

0: वैसे इसके अलावा अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल विश्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता।

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिपकर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी, अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल विश्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनके करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल विश्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहां उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह।
1: विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। 10 बजने वाले हैं, जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, थोड़ा इंतजार करें।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी का, वाचन स्वर शरद बाघेला के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। नौतपा के अंतिम दौर में नर्मदापुरम जिले में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को बादल छाने और हल्की हवाएं चलने से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने और क्विक रिस्पांस टीम गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए होमगार्ड विभाग को उपकरणों की जांच करने और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयां और एम्बुलेंस तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर इस वर्ष 3,94,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसके मुकाबले 5,83,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हुआ। गेहूं बेचने वाले किसानों को 1,507,64,00,000 रुपए का भुगतान किया जाना है, जिसके विरुद्ध अब तक 947,51,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उपार्जन के लिए 25 मई से किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। सेठानी घाट पर आम महोत्सव में जिले के निजी क्षेत्र, शासकीय फर्मों और प्राकृतिक रूप से उत्पादित आमों की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया। लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, चौसा, अल्फांसो, केसर, तोतापरी, हिमसा, बादामी, सफेदा और मालगुआ सहित अनेक प्रजातियों की विशेषताओं और स्वाद की जानकारी लोगों को दी गई। सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नर्मदापुरम जिले के कई अधिकारियों ने प्रदेश के टॉप 5 और टॉप 10 में स्थान बनाया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नर्मदापुरम जिले में जनजाति समुदायों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिले में संचालित जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले IEC अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई और शिविरों का आयोजन कर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाते और वनाधिकार पट्टों से संबंधित मामलों का निराकरण किया गया। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना में 315 गिद्ध दर्ज किए गए। इनमें 299 भारतीय गिद्ध, 11 सफेद गिद्ध और 5 सफेद पीठ वाले गिद्ध शामिल हैं। पिछले वर्षों में यह संख्या 280 से 290 के बीच रही थी। गंगा दशहरा के अवसर पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नर्मदापुरम के विवेकानंद घाट पर श्रमदान कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम आवरी में कलश यात्रा, जन संवाद और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं और जन हानि में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान सूचीकरण का कार्य इन दिनों तेजी से जारी है। इस अभियान में प्रत्येक मकान का विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से दर्ज किया जा रहा है, जिससे डेटा संग्रहण अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध हो सके।

0: निकायों के माध्यम से पूर्व में ही सभी मकानों पर नंबर अंकित किए जा चुके हैं, जिसके आधार पर अब सूचीकरण का कार्य प्रगति पर है। जनजातीय बाहुल्य विकासखंड केसला में एक माह का ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर कल संपन्न हुआ। शिविर समन्वयक आरती शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के साथ फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभिन्न खेलों सहित नियमित योगाभ्यास भी कराया गया। नर्मदापुरम जिले में आज से विश्व तंबाकू निषेध दिवस से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में विश्व पर्यावरण दिवस के तहत रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रियों और आम नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों के तहत जिले भर में घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान चलाया जा रहा है। नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज सिंह यादव ने बताया कि अब तक करीब 3,000 से ज्यादा लोग योग शिविरों में हिस्सा ले चुके हैं। नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी भोपाल।
2: जिले की चिट्ठी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम, आपके फोन आपके गीत।

0: आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का गुलदस्ता लेकर हाजिर हैं हम। कार्यक्रम है आपके फोन आपके गीत। आज आपके साथ हूं मैं माधुरी कटरे ब्रह्म और ये रही इस अंक की पहली कॉल। हेलो
1: हेलो आकाशवाणी बालाघाट।
0: जी आकाशवाणी बालाघाट।
1: हाँ मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: ध्रुवाराम साहू बोल रहा हूँ कन्या दमो से।
0: जी ध्रुवाराम जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं। खेत में था।
0: तो खेत में क्या चल रहा है इन दिनों?
1: खेत में उड़द की खेती कर रहे हैं।
0: तो अब
1: बस कटाई करने का ही समय है अभी।
0: हाँ
1: हाँ हाँ।
0: और गर्मी में कैसे ख्याल रख रहे हैं अपना?
1: बढ़िया ठंडे पानी पी रहे हैं, ज्यादा धूप में निकल नहीं रहे हैं, और निकलना है तो फिर वही है सिर को गमछे से ढक के और बढ़िया पानी पीते हुए छांव में बैठते हुए और अपने जो मवेशी धन है उनको ठंडे स्थान पर रखकर दो बार नहलाकर पानी पिलाकर रख रहे हैं सब अच्छे से।
0: और हमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप अपने साथ साथ पशु पक्षियों का भी ख्याल रख रहे हैं। एक हाँ, गुजारिश आपसे इतनी भी है कि पक्षियों के लिए भी एक जल पात्र की व्यवस्था करें ताकि वो भी इस गर्मी में पानी की बूंदों के लिए ना तरसें।
1: हाँ सही बात है
0: जी।
1: नहीं रखते हैं बाल्टी वगैरह से, जो प्लास्टिक की बाल्टी
0: हाँ,
1: है
0: हाँ, हाँ।
1: उसमें ढक के इधर रख देते हैं छांव में।
0: जी जी।
1: पेड़ पौधे आसपास तो है लगा हुआ है। और रही बात घर में, तो घर में टपों के माध्यम से गलियों में पानी रख देते हैं।
0: जी बहुत अच्छा।
1: तो आने जाने वाले जो मवेशी है वो पी लेते हैं।
0: जी बहुत अच्छा लगा जानकर। और आज गाना कौन सा सुनेंगे ध्रुवाराम जी?
1: फिल्म का नाम है खानदान। और गीत की बोल है नील गगन पे उड़ते बादल वाले, सुना दीजिए।
0: जी और इनकी बहुत जरूरत है ताकि ये बादल हम तक पहुँचे और बरसे और इस तपती गर्मी में कुछ तो हमें राहत मिले।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल जी। अच्छा गाना आपने पसंद किया है। आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं ध्रुवाराम जी। फोन करने के लिए बहुत शुक्रिया।

0: हेलो।
1: हाँ मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी, गंडी पंडरिया छत्तीसगढ़ से।
0: जी पवन जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत सुंदर हूँ मैडम जी। अब क्या है, तेजी से धूप बढ़ा हुआ है
0: जी,
1: और हम अपने घर में ही आराम कर रहे हैं, घर में से बाहर नहीं निकल रहे हैं 10 बज के मिनट बाद।
0: ये जरूरी भी है अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, इतनी गर्मी जी में जी। बाहर निकलना थोड़ा नुकसानदेह ही है।
1: हाँ मैडम जी,
0: और घर में रहकर हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: बिल्कुल सुनते हैं मैडम जी। अब क्या है, इसका आकाशवाणी बालाघाट के मुख्य स्रोत हमारे भाई धुरवाराम साहू जी से मिला है
0: जी, तो बहुत अच्छी बात है। आपसे पहले उन्हीं की कॉल कनेक्ट हुई थी और आप श्रोता एक दूसरे से इतने दूर रहकर भी जुड़े हुए हैं, जानकर अच्छा लगता है
1: जी मैडम जी। और क्या है, रेडियो सुनना ही तो हमारा पहला लक्ष्य है
0: जी, अच्छा लगा ये जानकर। और आज गाना कौन सा सुनेंगे पवन जी?
1: प्रेम रोग फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा आज, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर जी की आवाज में, भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गई राजकुमार वाला।
0: इसी तरह हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मैडम जी, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्ते
0: नमस्ते।
1: मैं प्रसन्न अवधिया लालबरा से।
0: प्रसन्न जी, कैसे हैं आप और आपकी दुकान कैसी चल रही है?
1: बहुत अच्छी चल रही है।
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, कैसे लगते हैं आपको?
1: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा, और लालबरा में टेम्परेचर कितना है इन दिनों?
1: 44।
0: तो आप कैसे ध्यान रख रहे हैं अपना?
1: गमछा बांधते हैं इस समय, जेब में प्याज रखते हैं, छाछ पीते हैं और आम का पना पीते हैं।
0: और इससे ये फायदा होता है कि हमारे शरीर को जितने तरल पेय पदार्थों की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति होती जाती है इन खाद्य पदार्थों से।
1: जी जी जी।
0: तो प्रसन्न जी, आज गाना कौन सा सुनेंगे?
1: आज गाना सुनेंगे अपने तो अपने होते।
0: अपने फिल्म का टाइटल ट्रैक सुनना चाहते हैं आप? आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं प्रसन्न जी। अपने रेडियो सेट पर आनंद लीजिए इस गीत का।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: आपके फोन आपके गीत।
0: जी हाँ, कार्यक्रम है आपके फोन आपके गीत।
1: जी जी जी, मैं गणेश टेमरे बात कर रहा हूँ मैडम जी, पांडा एयर ग्राम गंगुआ जिला सिवनी मध्य प्रदेश से।
0: जी, कैसे हैं आप गणेश जी?
1: जी जी, बस गर्मी का मौसम चल रहा है मैडम जी।
0: मैं
1: क्या है, बहुत पुराना श्रोता हूँ मैडम जी, मेरी लगभग 20 वर्ष हो गए मैं सुनते आ रहा हूँ आकाशवाणी बालाघाट।
0: जी जी, तो ये जो दौर आपने देखा 20 सालों का, कैसा लगा आपको ये सफर?
1: देखिए, इतनी अच्छी जानकारियाँ मिलती हमको वहाँ से, शिक्षा प्रद, लाभ प्रद, व्यवसायिक या खेती संबंधी, मतलब सभी चीज की पूर्ति हो जाती है। हम लोग जैसे अखबार पढ़ते हैं, कहाँ अखबार पढ़ने जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो रेडियो के माध्यम से हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती मैडम जी।
0: जी, और रेडियो का उद्देश्य भी यही है गणेश जी।
1: जी जी जी
0: जी, जी तो आज गाना कौन सा सुनेंगे?
1: रेखा जी का कोई सा भी गीत सुना दीजिए।
0: तो आप रेखा जी के फैन हैं?
1: जी जी जी जी, मैं तो मुंबई जाके उनके घर से होके मिल के आया हूँ रेखा जी से।
0: ओहो, कैसा अनुभव रहा आपका?
1: देखिए, बहुत अच्छा व्यवहार इनका, सरल स्वभाव। आजकल तो फिल्मी दुनिया से दूर हो चुकी हैं वो, हमने बहुत फिल्में देखे हैं इसलिए, और आज जो उनकी खूबसूरती है वो आज भी बरकरार है रेखा जी की।
0: जी जी, बहुत सही बात कही आपने, और अच्छा लगा आप रेखा जी से मिलकर आए हैं, ये जानकर और भी अच्छा लगा।
1: जी जी जी जी,
0: तो आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, आपने हमें फोन किया गणेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी जी, धन्यवाद।
0: हेलो जी, कार्यक्रम है आपके फोन आपके गीत।
2: नमस्ते जी।
0: नमस्ते,
2: उत्तम सिंह जंगेल आर्य नगर कोंका भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ।
0: तो कैसे हैं आप?
2: ठीक है मैं।
0: और मौसम
2: गर्मी बढ़ गया है, और जब से नौटप्पा लगा है तब से तो 2 दिन तो सवेरे सवेरे बदली थे, लेकिन दोपहर में 40-42 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा।
0: जी, आज गाना कौन सा सुनेंगे उत्तम जी?
2: मेरे को फिल्म मिस्टर नटवर लाल के गीत है, परदेसी आ वाला गीत है ना,
0: जी जी,
2: सुनवा दीजिए।
0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया
2: जी,
0: ये
2: जी,
0: बहुत ही सदाबहार गीत है।
2: जी जी
0: जी, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं उत्तम जी, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए, फोन करने के लिए शुक्रिया।
2: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते। कार्यक्रम है आपके फोन आपके गीत।
1: जी मैं समलापुर से नितेश नागरे बोल रहा था मैम। मैं
0: नितेश जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैम।
0: और आप हमारे नियमित श्रोता हैं?
1: जी बिल्कुल मैम।
0: कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम हमारे?
1: मैम कार्यक्रम तो बहुत अच्छे हैं मैम, और मैं तो यही कहूँगा कि मैं काफी दिनों से फोन कर रहा हूँ आपके, कार्यक्रम से जुड़ा भी हूँ, मगर बीच में अंतराल लेना मेरे लिए बहुत जरूरी, बहुत मायने रखता है कहना चाहिए मैम।
0: जी।

0: वो सभी के लिए मायने रखता है, जब आप अंतराल लेते हैं तभी दूसरे श्रोता जुड़ पाते हैं।
1: जी बिल्कुल मैम
0: जी। और कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: आपके फोन आपके वैसे सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे मैम आपके कहना चाहिए, बालाहाट आकाशवाणी तो मेरा फेवरेट है कहना चाहिए मैम
0: जी। आप ये बताइए, आप बहुत ध्यान से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, तो हमें कहाँ कहाँ सुधार करने की और जरूरत है?
1: देखो मैम, जब से मैं कार्यक्रम आकाशवाणी बालाहाट सुन रहा हूँ मैं, जब से कभी हमको शिकायत का मौका ही नहीं मिला, कहीं ना कहीं काफी चेंजेस हो जाता है कहना चाहिए, मतलब श्रोता लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता
0: जी। तो अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, आपके जो विचार हैं ये हमें और प्रोत्साहित करते हैं। आज कौन सा गीत आपकी फरमाइश बना है नितेश जी?
1: जी मैम वो एक गाना है, सुन सादा सुन प्यार की धुन, ये वाला सुना दीजिए मैम
0: जी। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं नितेश जी, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत शुक्रिया।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते,
1: मैं छत्तीसगढ़ बेमेत से बोल रहा हूँ। मैं
0: कौन साहब?
1: सुरेश कुमार सारथी।
0: सुरेश जी,
1: जी
0: तो कैसे हैं आप और बेमेतरा का मौसम कैसा है?
1: इधर तो भीषण गर्मी है मैम
0: जी। तो अपनी सेहत का कैसे ध्यान रख पा रहे हैं आप?
1: वही खान पान का ज्यादा ध्यान रखते हैं मैम, जैसे
0: और...
1: कि नमक मिर्च वाला मसालेदार युक्त भोजन नहीं करते हैं, और खीरा ककड़ी कलिंदर खरबूज और ये सब फल फूल खाते रहते हैं मैम, ताकि शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे।
0: अच्छा लगा जानकर। और जिस तरह से हीट वेव चल रही है, लू चल रही है, ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।
1: भीषण गर्मी के नाम से अब घर से निकलना भी दुर्लभ हो गया है।
0: जी जी।
1: और अब काम तो करना ही पड़ेगा मैम, जैसे कि मैं सारथी हूँ वैसे ही मेरा काम भी सारथी का है मैम। पहले जमाने में हमारे पूर्वज लोग घोड़ा रथ टांगा चलाते थे।
0: हाँ।
1: अब दिन प्रतिदिन यह तो लुप्त हो गई
0: जी,
1: इसलिए मैं ड्राइवरी का काम करता हूँ मैम, यही हमारा रथ है।
0: तो देखिए, सिर्फ संसाधन बदले हैं, काम तो अब भी वही है।
1: जी मैम
0: है ना। तो पहले घोड़े हुआ करते थे, रथ हुआ करते थे, तो आप उसके सारथी थे। अब कार हैं और ऑटोमोबाइल्स हैं इतने सारे, तो आप उसके सारथी हैं।
1: जी मैम इलेक्ट्रॉनिक का सारथी हैं आप।
0: जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। सुरेश जी, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: सावतन का है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में है मैं। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है।
0: गाना तो बहुत अच्छा आपने पसंद किया, सुनाया भी। आपकी शादी हो गई है?
1: जी मैम, चार बच्चे हैं मेरे।
0: फिर भी ये गाना आप सुनना चाह रहे हैं?
1: जी फिर लड़के हैं मैम, एक लड़की है।
0: हाँ।
1: दो साल पहले लड़की का शादी हुआ है, और लड़का मेरा PWD में है, कमल खान सारथी, कार्यरत है। और दो लड़के हैं जो ठेकेदारी का काम करते हैं मैम।
0: जी, तो आपका भरा पूरा परिवार है। अच्छा लगा आपसे बात करके सुरेश जी। आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम है आपके फोन आपके गीत।
1: मैं गंडई पारा छत्तीसगढ़ से जागेश्वर विमान बोल रहा हूँ।
0: जी जागेश्वर जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं मैडम।
0: और हमारे कार्यक्रम सुनते हैं
1: जी?
0: कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं?
1: मैं ही एक फरमाइशी वाले कार्यक्रम सुन रहा हूँ
0: जी।
1: अभी बीच में मैं जगन्नाथपुरी चला गया था।
0: हाँ हाँ,
1: कल ही आया हूँ। आज फोन लगाने पाई लगाया हूँ
0: जी। तो आप जगन्नाथ महाराज के दर्शन करके आए हैं पुरी से?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कैसा अनुभव रहा?
1: बहुत अच्छा लगा, वो भी एरोप्लेन से गए थे भाई।
0: अरे वाह, तो पहली हवाई यात्रा थी आपकी ये?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले पहले।
0: और अब आप ये बताइए, आज गाना कौन सा सुनेंगे?
1: राजेंद्र गीत सुना दो।
0: कौन सा गीत?
1: कोई भी गीत सुना दो, सभी गीत अच्छे सुने
0: जी। तो हम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं जागेश्वर जी, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

देते हैं हमारा फोन नंबर, नंबर है 07632292173 यानी 07632292173। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है हर बुधवार सुबह 10:30 से 11:15 तक। जुड़िए हमसे, सुनिए अपने फरमाइशी फिल्मी गीत और अब दीजिए इस अंक से इजाजत। नमस्कार।

ये था आज का अंक जिसे आपके रेडियो सेट तक पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग मिला RL कटरे और अंकित चाकुले का। प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की। जो श्रोता हमसे इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हम बता

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम,
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: आकाशवाणी का ये बालाघाट केंद्र है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 11 बजने जा रहे हैं। हमारा विशेष प्रसारण जिसमें आप सुनेंगे मन की बात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से थोड़ी ही देर में।
2: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
0: चले
1: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप

0: बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
4: नमस्कार सर। नमस्कार।
5: नमस्कार सर।
3: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
4: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूं, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूं। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
5: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली, जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड

0: टूटता हो देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी, मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे, और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?

0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे। तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण।

संक्रमण रेखा यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि
के इंस्क्रिप्शंस

छठी सातवीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे

चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया, सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया, लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी, उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि मां भारती के प्रति उनका समर्पण

0: समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: हमारे विशेष प्रसारण के तहत मन की बात कार्यक्रम हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड पर यह है प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। 11:32 हो चुके हैं। अब आप आनंद लीजिए विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का।
3: साझा कर रहे थे मन की बात और आइए अब सुनते हैं ये देशगान।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम मशहूर पार्श्व गायक केके को याद कर रहे हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है सॉरी भाई। आवाजें केके, सुनिधि चौहान और

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सॉरी भाई का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं केके और तुलसी कुमार का गाया फिल्म नहले पे दहला। इस फिल्म का गाना, गीतकार हैं पंछी जालुनवी और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, गाने वाले कलाकार के और सुनीति चौहान, फिल्म का नाम हमराज़।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रीतम के संगीत निर्देशन में अनिल भारद्वाज का लिखा हुआ सुनिए। आवाजें हैं के और राकेश पंडित की और ये फिल्म है स्टम्प्ड।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज केके की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम का अगला गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नितिन उरेकवार का लिखा हुआ, इसे आवाजें दी हैं केके और सुनीति चौहान ने। फिल्म का नाम है रूढ़।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: आवाजें के अलीशा चिन्नॉय और जयेश की थी। फिल्म का नाम था दिल ने जिसे अपना कहा। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम के संगीत निर्देशन में सईद कादरी का लिखा हुआ, आवाज केके की, और ये फिल्म है मेट्रो।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन पटवा के संगीत निर्देशन में डॉक्टर सागर की रचना, स्वर के और अन्वेषा सरकार की। फिल्म का नाम है लव यू सोनियो।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने मशहूर पार्श्व गायक के को याद किया।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का? और मेरा भी जी, इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो पल उतना ही दुखदायी हो जाता है, है ना? तो बस आज हम उन्हीं कुछ पलों पर बात करने वाले हैं कि कई बार जीवन में किसी के चले जाने से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे विचारों से, हमारे दिल और दिमाग से कहीं जब कोई चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एहसास कितना पीड़ादायी होता है। और इसी पर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमने हमारी इबारत लिख भी दी है कि किसी के जीवन, घर, विचार से कहीं चले जाने का एहसास बहुत पीड़ादायी होता है साजना, और दीवाने रूठ कर न जाने कहाँ चले जाते हैं कि फिर उनके बगैर नींद भी नहीं आती। किसी के छोड़कर कहीं चले जाने पर दिल उनकी धुन में रोता जाता है और जोगी बन जाता है। तो ये है आज का सुरीला सफर। हमने आपको इबारत बता दी है, आपने पढ़ भी ली है, और जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनने भी ये सुन लिया होगा कि आज हमने क्या इबारत रखी है। और साथ ही हम उन शब्दों को भी बता देते हैं जो आज के चयनित गीतों में आएंगे। साजना कहीं दीवाने कहां छोड़ के रूठ कर जाता है नींद धुन दिल और जोगी। जी, ये ठीक उसी प्रकार का दुख कह सकते हैं कि आप ये कार्यक्रम अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा, है ना? बस इसी प्रकार कोई जिंदगी से जब चला जाता है और जिंदगी को मझधार में रख जाता है तो कैसा लगता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक बस उन्हीं रिश्तों से हम जब अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं और उसके चले जाने पर, उस किरदार के चले जाने पर हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं कि वो हमारी जिंदगी से चला गया है, तो बस इसी जाने पर आज इस सुरीले सफर को हम तय करने वाले हैं। ठीक है, आप हैं ना हमारे साथ? तो कार्यक्रम का ये है पहला गीत। राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा है शब्द साजना।

ये स्वर थे लता मंगेशकर और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थाई होती हैं, अदृश्य होती हैं और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है, और जब मन को पता है कि जाने वाला लौटकर आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक अव्यक्त बेचैनी छिपी है, मन में एक मानसिक द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो शब्द हमें दिए हैं इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आत्मी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं, जहां पलकों पर नींद नहीं सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है। जब कोई अपना रूठकर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बात है, ये विरही है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी। वास्तविकता भी यही है कि किसी का जाना हमें उदास कर देता है, क्योंकि जाना बिछो को निरूपित करता है और आना मिलन को निरूपित करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से संगीत की दुनिया की सैर करेंगे। सभी को नमस्ते। बहुत खूब। देखिए बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संबंधों के बिछुओं में व्यथित हृदय की पीड़ा का बखान है। चाहे ये बिछुओं प्रेम युगल का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं, और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है। तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं आप सभी ने। लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती है कि नहीं, ये आपको गाने सुनने के बाद ही पता लगेगा। आइए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपसे पूछनी भी तो है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी जिंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूं चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल, सवाल नहीं, एक बातचीत कह सकते हैं, आपके मन के भाव, आपकी जिंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठ कर आए हैं, निकल कर आए हैं। ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइएगा हमें कि आपसे ऐसी गलती हुई या आपने जो किया सही किया क्या? कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, और बाद में हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की जिंदगी से यूं चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से ही कहेंगे कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा, सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं, बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी फिर नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं, बिछड़े सभी बारी बारी ये सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगोकर चली आ रही हैं, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारी सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है, हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी, हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे, कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोचकर लिखने बैठूंगा, नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने, यानी एक छोटा सा शब्द है ये, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए है। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसर, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है, जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए।

जी तो हम भी इस सुरीले सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए, या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रूठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने और बाद में आपको लगा कि नहीं, मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना, चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो भी दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द भाव लेकर आता है, यह न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहां एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हां, उन यादों को हम जरूर कहीं ना कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम आरजू। जी, ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे रूठ कर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं की पसंद मिलती है इस गीत के जरिए, है ना।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जाना है तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर कभी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का ये सुरीला सफर, जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती

कि ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहरी में ठंडक पहुंचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तपती दोपहरी में गीत आपको सुकून दे रहे हैं क्या, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई तक छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की एक आह से कई कहानियां बन जाती हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांघ कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है। दिल की बस्ती ऐसे उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है। रातें जागकर कटती हैं, आंखें बंद करते ही उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींदें छीन लेता है। इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार हैं, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है देखिएगा। हाँ, मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो हैं हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे, मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई जिंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कही नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है। हर छोटी चीज उनकी याद में उनकी याद दिलाती है, कोई गीत, कोई जगह, कोई पुरानी बात। और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारी रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते, लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंसुओं से ज्यादा उन मुस्कुराहटों में छिपा होता है जहां हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखते हैं कि आज संडे की दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी इस समय हमें जाना है, पर उठकर नहीं हम जा रहे, माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं। साजना के साथ सजनी भी होगी, परंतु आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं। क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से? ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए? लिखिएगा ये बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठकर चले आए हैं, आप किसी की जिंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धत्ता बता दिया है, या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बसा ली है, ऐसी बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है। और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई हूँ। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

0: जाता है तो जा, ओ जाने वाले जा, मेरे मन से धड़कन से तू जा सके तो जानू
1: जाता है।

ग्यावासी लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय, जो एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, ये अकेलापन और खालीपन इंसान को अंतर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को ये दर्द ताउम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। रूठकर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई, तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम की आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौटकर आएगा अचानक और कहेगा मैं यहीं था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूँ मैं आपके लिए, क्या कहूँ मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था, और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार

देखते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था, मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा सा कि मैं हूं ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है, ये आपने अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो, तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं? शायद वहां दूरियां ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दूरियां बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत, आशा भोसले की आवाज, शकील बदायूनी के बोल और रवि की धुन।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा जी। ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन किए ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां माँ लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ न कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंदी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गांव के लोग जाने वाले रास्ते पे खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहां सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते समय भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है, वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा करते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही एक लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें जरा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियां साथ नहीं देती और आंखें बेवफाई करने लगती हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया। और ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया और कुछ समझ में नहीं आया। मन को एक अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भरा पल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूं और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है। इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूं विविध भारती को। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पूछा है कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वो छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण मैं नहीं भूल पाती। ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी, बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगस्त 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस संसार से चली गई थी, और मेरे जीवन में वो इतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और अब सुरीला सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाजत। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है कि इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं, तो मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सलिल चौधरी के संगीत से सजे गीत से। आवाज तलत महमूद की है और फिल्म है छाया।

0: फिल्म गंगा जमुना के स्कीम के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय विशेष उत्साह में हैं। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरीय निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों को द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत

अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्र की जाएगी। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। तेज आंधी के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। रात करीब 12:30 बजे से सुबह 3 बजे तक भोपाल में तेज हवाएं चलती रहीं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल होने की शिकायतें सामने आईं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले घंटों में भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मौसम विभाग ने आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर में कॉलेज चलो अभियान एवं प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने यहां आयोजित रोड शो में सहभागिता की। रायसेन जिले के ग्राम सेमरी की अंजना यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मादा चीता निर्वा और उसके 3 शावकों को कल उनके बाड़े से निकालकर क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया। इससे अब यहां चीतों की संख्या 20 हो गई है। इनकी रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम से लगातार निगरानी की जा रही है। राज्य शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की आज आगरमालवा में बैठक हुई। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया क्षेत्र में पुरुषोत्तम मास के 15 दिन पूरे होने के अवसर पर आज सांडिया स्थित नर्मदा तट पर धार्मिक मेले का आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम

0: अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्णरेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी

0: प्रोफेसर हूँ, पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
3: नेवी, एयरफोर्स,
4: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
3: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली

0: योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में 100 पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना। आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं। स्वर लता मंगेशकर का और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने, फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास की संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

0: पवन हो तुम चल धारा, मन की मैया डोल जाए, मस्त पवन हो तुम चल धारा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
4: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल विश्वास का।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है हीर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

0: भारती से बोल रही हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर

0: 19,750 मुंबई 400091।
1: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत।

0: भी। और ये खत आया है कृष्ण बाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे, गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद हुए हैं।
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एमजी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मनचाही गीत।
0: मनचाही गीत।
1: मनचाही गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए आप सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा
2: रहा है। बल्कि ये तो मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डेजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूं दो हफ्ते की छुट्टी ले लूं। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो नो नो नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेंगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए?
1: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना।
2: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा सा नन्ना।

0: और तेजी
1: छोड़ दीजिए ना।
0: अरे अरे सुनो तो।
1: नहीं सुनती।
0: ओफो, अरे बात तो सुनो
1: बेनी। देखो देखो तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
0: ओ डेजी डेजी माय लव। डेजी हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
0: सुनो मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
0: अच्छा बाबा हम दोनों जैसा।

0: डेजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत है।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी,
0: डेजी व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की हुई सिंदूर।

0: देने मांग गई।
1: मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
2: कैसे?
1: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
3: कौन कहता है?
1: मुझे ऐसा लगता है।
3: मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
1: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
3: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
1: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
3: भाई उसे दवा दी जा रही है।
1: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
3: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
1: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में
3: नहीं।
1: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
3: तो क्या करूं मैं? आराम इंजेक्ट किया जाए?
1: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
3: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
1: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
3: इच्छा नहीं है
1: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
3: कुछ भी मतलब निकाल लो।
1: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
3: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
1: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
3: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने कुरूप बच्चे का पिता होने का भार नहीं ढो सकता।
1: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा। इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूं। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
3: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
1: लेकिन मैं मां हूं, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
3: जब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
4: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
3: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्योंड़े जी?
1: जी
4: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
1: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
4: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
3: अरे भाई वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
4: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा।

0: लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा, है? ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
1: एक साथ घूमने लगेंगे?
0: हाँ?
1: आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
0: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है?
2: वो
0: सो रहा है?
1: वो तो बहुत बीमार है, 2-3 दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
2: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
0: चलिए एक बार मैं भी देख लूँ।
1: हाँ,
0: ओ लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है।
2: वेल बट दैट डजंट मैटर डॉक्टर, स्लाइट फीवर ओनली, मैंने दवा दे दी है वैसे।
0: अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे को जरूरी काम है। चलो डेजी।
2: ओके
1: अच्छा
2: बाय डॉक्टर, बाय बाय।
1: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
3: जब तक जरूरी होगा।
1: मुझसे अब और नहीं सहा जाता, कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
3: अपने लिए।
1: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
3: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
1: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
3: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
1: आपसे कहा था जरा बच्चे की जांच कर लो।
3: जांच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
1: ये क्यों नहीं कहते कि आप जांच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
3: डेजी, तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
1: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
3: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
1: बंद भी करो ये सब, बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
3: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
1: बेनी को यहां क्यों घसीट लाया?
3: मैं घसीट लाया? ये कहो बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है, और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
1: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
3: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी के साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
1: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
3: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
1: तुम्हें क्या हो गया है?
3: तुम उससे ज्यादा बेनी के फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
1: मिल गया संतोष। बेनी, मुझे क्षमा करना बेनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
0: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
1: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर, आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
0: कैसी शंका?
1: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
0: ओ डेजी, तुम्हारा सवाल बड़ा विचित्र है।
1: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
0: नहीं।
1: हाँ, मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
0: लॉरेंस को? नो नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
1: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
0: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
1: आप ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
0: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ?

0: बोलो बेजी बोलो, क्या हुआ?
1: इस बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
0: क्या?
1: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूं। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
0: क्या?
1: लेकिन वास्तव में डॉक्टर, डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
0: बोलो।
1: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
0: मैं?
1: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
0: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है। मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी।
1: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
0: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
1: प्लीज डॉक्टर।
0: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूं।
1: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
2: बेनी का प्रेत?
1: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
0: डॉक्टर लॉरेंस?
2: ओ डॉक्टर रामदास,
0: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
2: बैठ जाइए
0: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
2: जी,
0: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
3: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
0: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
3: समझा नहीं?
0: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
3: What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
0: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
3: डॉक्टर।
0: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
3: नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
0: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
3: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई सेड डॉक्टर।
0: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
3: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
0: नहीं, नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? 2 घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी।

0: ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गए, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझकर ही किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
1: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
0: नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
1: डॉक्टर, नो डॉक्टर,
0: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
1: नो नो,
0: क्यों डॉक्टर, सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उड़न होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया, क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
1: डॉक्टर, डॉक्टर
0: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
1: सच है, सच है डॉक्टर, लेकिन उससे उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
0: बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया, भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
1: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
0: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू।
0: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर।
0: क्योंकि ना कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर रॉबिन्स, मैं अब चलता हूं।
1: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
2: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
1: डेजी, डेजी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
1: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
2: लॉरेंस, तुम अचानक,
1: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
2: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
1: हाँ, लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
2: मैं भी तुम्हें,
1: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
2: भुला दूंगी।
1: हाँ,
2: हाँ, हमेशा के लिए भुला दूंगी।
1: हाँ, वो डेजी, मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
2: हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
1: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के हम यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
2: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
1: डेजी,
2: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को

0: मार डाला ना।
1: ये क्या कह रही हो तुम डेजी?
0: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
1: डेजी,
0: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ले।
1: नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो।
0: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रहे।
1: डेजी ये सच नहीं है, मैं कहता हूँ डेजी।
0: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
1: ओह माय गॉड,
0: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
1: ओह नो,
0: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
1: विदा?
0: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
1: था। डेजी, डेजी,
0: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना। अरे, ये आपको क्या रहा है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
1: डेजी, मेरी नसें टूट रही है। डेजी, डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। डेजी,
0: नहीं लॉरेंस, नहीं लॉरेंस, विश्वास करो, मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल लिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? करो करो बेटा, भागी भागी हॉस्पिटल गई। डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी।

0: सोचने लगे।
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

वलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता।

0: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो।

दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा।

0: गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया,
0: जी
1: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं।
0: जी
1: है ना, मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना हो, तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है।
0: जी
1: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका।
0: जी बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में।
1: जी
0: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
1: मैं तो अच्छी हूँ।
0: मितुल जी, आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
1: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया
0: जी
1: अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
0: अच्छा
1: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी, वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे,
0: जी
1: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा, रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
0: अच्छा जी
1: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
0: रखते
1: हैं।
0: ही हैं।
1: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे, तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
0: अच्छा
1: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बंबई थी।
0: जी बिल्कुल
1: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए। ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति, डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था,
0: जी
1: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
0: अच्छा जी
1: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे। उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे,
0: जी
1: रावल जी,
0: अच्छा
1: और उन्होंने उनको सुना। उन्होंने जाकर के हिमांशु रॉय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में।
0: जी
1: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूं भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इंप्रेस हो गए। और वो इंप्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
0: अच्छा
1: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूँ, मैं तो कवि हूँ, और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक

0: राइटिंग है। तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार बन
1: गीतकार
0: गए।
1: बन गए थे। कौन
0: तो
1: से
0: अब
1: सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें लिया गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल।
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप,
1: प्रदीप
0: तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए, उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार,
1: जी एक्टर।
0: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो, तो कवि प्रदीप अलग हो गए,
1: और प्रदीप
0: प्रदीप कुमार
1: कुमार
0: अलग हो गए। तो ये
1: अलग
0: आपके सवाल का जवाब है।
1: हो गए। तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना,
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार की
1: हेमंत
0: आवाज में।
1: कुमार की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ
1: एक
0: में।
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी
0: है ना।
1: बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं ये
0: हाँ
1: प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था?
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों।

0: के बीच में।
1: हम्म,
0: तो मैं छोटी और दीदी ज़्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई फंस रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफ़ी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
1: जाना
0: थी।
1: हुआ जी।
0: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफ़ी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
1: जी।
0: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति,
1: और सिद्धांतवादी।
0: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड
1: अच्छा
0: लेना ही बंद कर दिया।
1: अच्छा
0: हाँ, तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग मेन, मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती,
1: जी।
0: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था,
1: हाँ
0: तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी
1: अच्छा
0: भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
1: जी।
0: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
1: इतनी फ्रीडम थी
0: फ्रीडम। हाँ,
1: जी।
0: तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई, और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
1: नहीं थी जी।
0: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने 7 फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी
0: बहुत बहुत बहुत सारी
1: जी।
0: बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने, ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफ़ी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ,
1: जी।
0: आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: जी, वो गर्म
0: मैं
1: है।
0: गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी, दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूँगा, हाँ मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ
1: अच्छा
0: लेना नहीं चाहता हूँ,
1: जी।
0: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स 2-3 साड़ियाँ तो दी
1: हाँ
0: होगी,
1: हाँ
0: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी

0: वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू।
1: पिता जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब
1: अच्छा
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूँ।
1: अरे हाँ
0: तो उन्होंने बोल दिया माँ पर, मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
1: जी
0: लेके।
1: जी
0: तो वहां से कोई नहीं आया। वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
1: जी
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था। अरे नारायण जी आप आए हैं, आइए। बोलते माफ कीजिए, लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए। और वैसे मतलब ये जो
1: विवाह,
0: यूनियन
1: हाँ
0: था
1: वो संपन्न
0: विवाह
1: हुआ।
0: का, तो वो खुशी
1: जी
0: खुशी उसकी समापन हुआ,
1: जी जी तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही
0: एक पानी बन के
1: दाम्पत्य
0: रही।
1: जीवन में।
0: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी, लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी ये सबसे बड़ी बात है। जी
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं, लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी, और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी।
1: वाह,
0: मतलब
1: उनकी शिक्षा दीक्षा भी है इस माहौल
0: ऐसी
1: में की
0: थी।
1: गई
0: हाँ
1: नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज़ में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
1: जी
0: गा रही है जिंदगी।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रहीं, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की तरह,
1: आम पिता की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
0: जी, बिल्कुल,
1: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया।
1: जी, जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम, इंदौर, वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई, मतलब मेरे ताऊजी, वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू, उसको भेजा इलाहाबाद। मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था, वो इलाहाबाद में था। क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे, वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई
0: जी,
1: वो उन्होंने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफ़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे, और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है, ये
0: मतलब
1: कोई जानबूझ
0: के प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था। तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है, वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
1: और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
0: जी,
1: इलाहाबाद में। तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
0: अच्छा,
1: हाँ। तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
0: हाँ,
1: और
0: तब
1: फिर
0: तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
1: नहीं नहीं नहीं वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके, वो जब ग्रेजुएट हो गए, तब वो आए थे मुंबई।
0: जी, हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
1: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई।

0: वो काफी मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया
1: उग्र
0: था उस
1: रूप में।
0: वक्त,
1: हाँ जी
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
1: जी क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी? आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो जिस कविता ने।
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
1: जी
0: थी,
1: जी
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये
1: जी
0: कविता
1: जी
0: लिखी
1: बिल्कुल।
0: है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
1: बहुत खूब।
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: ये यही
1: जी
0: कविता है जो उन्होंने
1: लिखी
0: उसी वक्त
1: उसी
0: लिखी।
1: दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ
0: अंकुर
1: और
0: पैदा
1: वहां से
0: हुआ।
1: वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ
1: जी तो मित्तुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं। आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है,
1: जी
0: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी
1: लेकिन जो बातें सुनी, और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी।
0: जी
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको
0: बिल्कुल
1: गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान,
0: जी
1: माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत कर दिया।
1: भूमिगत, भूमिगत तो भूमिगत हो गए। तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे, वो वहाँ पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे,
0: जी
1: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहाँ के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं, देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
0: बिल्कुल
1: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है? तो वो बात
0: जी
1: सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
0: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
1: शब्दों
0: क्योंकि
1: की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
0: बिल्कुल। और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो है हिलोरे लेने लग जाता
1: और
0: है।
1: दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
1: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो
0: जी
1: उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती
0: किश्ती
1: निकाल
0: निकाल
1: के,
0: के,
1: तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी। सबसे बड़ी बात
1: सही
0: ये
1: बात।
0: है।

0: ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
1: बहुत ज्यादा। गांधी जी उनके हीरो थे, तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल
1: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में, आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई, और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है, ये इस गाने के
0: कोई
1: सिवाय वो पूरी नहीं
0: गाना जी
1: होती।
0: बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ।
1: जी,
0: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
1: यही गीत
0: साबरमती के संत।
1: साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू, बड़नगर में उनकी पैदाइश, बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहाँ के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहाँ जाते रहते थे, वहाँ खेत खलिहान थे। तो वहाँ पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं,
0: भील जाति,
1: तो भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूँ डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गाँव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की भी नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है। ठीक है, तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया,
0: जी
1: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
0: बिल्कुल।
1: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं।
0: बिल्कुल, वो दर्शन
1: एक
0: जो
1: छोटे
0: उन्होंने
1: पिंजरे
0: दिया
1: में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे
0: अध्यात्म के
1: संसार
0: गीत
1: की
0: हुए।
1: हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको
0: मुखड़ा
1: क्या
0: देख ले
1: बताऊं,
0: दर्पण में
1: मुखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
0: सीरीज है उनके पास, और
1: हाँ
0: आज भी उनके
1: सुनते हैं लोग,
0: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद
1: सुनते
0: करते हैं।
1: हैं।
0: क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
1: पिंजरे के पंछी सुनिए।
0: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।
2: पिंजरे के पंछी।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था, शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे। तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं हैं जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था, जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं? हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो

0: आईका आईका सर्व लोग आईका, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का, मैं छोटी थी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
1: अच्छा जी
0: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं,
1: हाँ
0: और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी। सब सब लोग, तुम क्यों रो रही हो?
1: हाँ
0: मैंने बोला, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी, और मेरी माँ मुझे
1: चुप
0: वो कराती थी कि
1: कराती
0: नहीं, ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू,
1: थी।
0: और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा।
1: जी,
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहाँ हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे
1: मिटे
0: ना
1: ना
0: रे
1: रे
0: भाई,
1: भाई।
0: जरा समझो इसकी सच्चाई रे। गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है, कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या हैं।
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता
0: जीवन
1: है और अपने
0: दर्शन
1: मन को हम समझा लेते हैं
0: समझा
1: कि
0: लेते
1: अच्छा,
0: हैं।
1: इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मिठे नारे भाई, तो
0: हाँ,
1: हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में ये
0: कर्मों
1: सब
0: में कुछ
1: लिखा
0: गलत।
1: है तो
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले
1: वाले
0: तेरे दुख दूर करेंगे राम,
1: राम।
0: तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों को। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। शाम के 5 बजे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTEC कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युवाणी, और दोस्तों आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो कि हर साल 31 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी, जिसका उद्देश्य है तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना, तंबाकू छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना, नई पीढ़ी को बचाना, जिसमें विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को तंबाकू की लत से दूर रखना है।
3: ये संदेश है हम हिंदुस्तानियों का सारी दुनिया के नाम।

0: अपने सुनने वालों को हम बताना चाहेंगे कि आज शाम 6:30 पर आप सुन सकेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रेडियो रिपोर्ट। संकलन और वाचन होगा रविशंकर दुबे का, प्रस्तुति होगी कुंवर विक्रम सिंह की।
1: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
1: सीकेवाईसी मतलब?
2: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14-डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे विश्व तंबाकू निषेध दिवस की। दोस्तों, आजकल कई बच्चे और युवा तंबाकू का सेवन करते देखे जाते हैं, जबकि हम इसके नुकसान से भलीभांति परिचित हैं, क्योंकि दुनिया में लगभग हर साल 80 लाख लोग तंबाकू का सेवन करने से मरते हैं। भारत में 13 लाख मौतें तंबाकू के सेवन से होती है। तंबाकू सेवन करने वाले को कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, फेफड़ों की बीमारी और मुंह का कैंसर होता है। तंबाकू से बनने वाली चीज़ें, सिगरेट, बीड़ी भी जानलेवा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल लोग सिगरेट पीकर धुआं उड़ाना फैशन और शान समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि सिगरेट न पीने वाले भी धुएं से बीमार पड़ते हैं और उन्हें अस्थमा रोग हो सकता है। दोस्तों, जो व्यक्ति गुटखा खैनी का उपयोग करते हैं, उन्हें मुंह का कैंसर 90% मामलों में तंबाकू चबाने से होता है। नशा ये प्यार।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: दोस्तों, हम बात कर रहे थे विश्व तंबाकू निषेध दिवस की। भारत में 28.6 वयस्क तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, जबकि कानून है कि सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान बैन, 18 साल से कम को बेचना जुर्म है, सिगरेट गुटखा के पैकेट पर 85% हिस्से पर कैंसर वाली फ़ोटो ज़रूरी। दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो इस नशे के गिरफ्त में हैं, वो आज 31 मई को क्विट करने का सबसे अच्छा दिन है। तंबाकू छोड़ने के लिए 1-800-11-2356 पर कॉल करें, जो कि भारत सरकार की फ्री हेल्पलाइन है। दोस्त परिवार को प्यार से समझाएं, डांटे नहीं, नियम फॉलो करें, बच्चों के सामने बिल्कुल सेवन नहीं करें। दोस्तों, तंबाकू से बनी कोई भी चीज़ें सुरक्षित नहीं है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, हुक्का, ई सिगरेट सब नुकसान करते हैं। सरकार को भी चाहिए कि तंबाकू कंट्रोल के लिए सख्त कानून बनाए। दोस्तों, तंबाकू से बनी चीज़ों के नशे में शामिल अपने साथ साथ परिवार और समाज का अहित करते हैं, और नशे के चक्कर में ये कहते हैं।

दोस्तों आप सुनिए ये रोजगार सूचना। रेलवे भर्ती बोर्ड ने रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 जून 2026 से शुरू किए हैं। कुल रिक्त पद है 6,565। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 तक है। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप गूगल में रेलवे टेक्नीशियन लिखकर सर्च कर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी रोजगार सूचना और इसके साथ ही आज का हमारा युवाणी कार्यक्रम संपन्न होता है। इस कार्यक्रम से अपने दोस्त आशीष सेंद्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने चुना था कुली नंबर 1 फिल्म से, सुमधुर आवाज से आप सुन रहे थे पूर्णिमा और कुमार सानू की, गीता समीर का संगीत, आनंद मिलिंद का। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब सुनते हैं गिरफ्तार फिल्म का गीत। सुरों से संवारा है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, गीतकार हैं इंदीवर, संगीतकार बप्पी लाहिरी।

0: श्रोताओं, ये गीत था गिरफ्तार फिल्म से। शुरू से संवारा था किशोर कुमार और आशा भोसले ने। गीत को लिखा था इंदिवर ने, संगीत तैयार किया था बप्पी लहिरी ने।
1: सतपुड़ा अंचल की वादियों में गूंजती आपकी अपनी आवाज,
2: आकाशवाणी बालाघाट।
1: शिक्षा, सूचना और मनोरंजन की त्रिवेणी,
2: हर पल हर दम आपके साथ, यूं ही बना रहे आपका हमारा साथ।
1: रोजाना सुनते रहिए आकाशवाणी बालाघाट।
0: आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब सुनिए कुमार सानू की आवाज में किस्मत फिल्म का गीत। बोल लिखे हैं समीर ने, धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, ये गीत था किस्मत फिल्म से, आवाज दी थी कुमार सानू ने, गीत को तैयार किया था समीर ने, संगीत से संवारा था नदीम श्रवण ने। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब सुनते हैं परदेसी बाबू फिल्म का ही गीत। स्वर दिया है उदित नारायण ने, गीत और संगीत है आनंद राज आनंद का।

0: श्रोताओं नमस्कार, युववाणी कार्यक्रम में मैं आपका रेडियो दोस्त धीरज आप तमाम सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हमारे आशीष शिंदे जी बता रहे थे कि आज है नो टोबैको डे, तो आज तंबाकू निषेध दिवस है। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं आज अमन दुबे जी, तंबाकू निषेध दिवस, यानी कि आज देखा जाए तो हमारी बहुत सारी युवा पीढ़ी जो है तंबाकू का सेवन करने लगी है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आपके क्या विचार हैं
1: सर। जिस तरीके से युवाओं को नशे के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है, यह देश के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और जिस प्रकार युवा नशे के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, उस कारण कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, जैसे कैंसर और भी टीवी, कई प्रकार की बीमारियां युवाओं को होते जा रही हैं। यह तम्बाकू सभी को छोड़ना चाहिए।

0: क्योंकि तंबाकू से ही परिवार उजड़ रहे हैं।
1: गुटखा सिगरेट जो भी है,
0: शराब जो भी है,
1: आप त्याग कीजिए, आप मुख्य धारा में वापस आइए और अपना सेहत आप बुलंद कीजिए।
0: बिल्कुल,
1: तो हम तो जुड़े रहेंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन सुनते हैं एक गीत।
0: बिल्कुल सर,
1: और यह गीत है फिल्म बादशाहों का, और जिसमें आवाज़ें दी है नुसरत फतेह अली खान और राहत फतेह अली खान ने।
0: वाह सर।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: सोलर ग्रीन फ्यूचर लेकर आया है एक खास योजना आपके लिए।
1: अपने घर, दफ्तर और कंपनी की छत पर सोलर पैनल लगाएं
0: और ग्रीन एनर्जी पाएं
1: 30 साल तक की वारंटी के साथ, घर बैठे बेहद कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा।
0: जिले का एकमात्र MNRE दिल्ली अवार्डेड सोलर हाउस,
1: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं
0: और चले आए ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर, काली पुतली चौक, मार्केटिंग सोसाइटी के ऊपर, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 8770854830,
0: 7581938175।

0: श्रोताओं, हम माफी चाहेंगे कि गुड इवनिंग बालाघाट का जो कार्यक्रम है कुछ समय आप नहीं सुन पाए। एक बार फिर आप जुड़ रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट से, और आपने सुनने वालों को बता दी कि आज शाम 6:30 पर आप सुन सकेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रेडियो रिपोर्ट। संकलन और वाचन होगा रविशंकर दुबे का, प्रस्तुति होगी कुंवर विक्रम सिंह की।
1: ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर लेकर आया है एक खास योजना आपके लिए।
2: अपने घर, दफ्तर और कंपनी की छत पर सोलर पैनल लगाएं
1: और ग्रीन एनर्जी पाएं
2: 30 साल तक की वारंटी के साथ, घर बैठे बेहद कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा।
1: जिले का एकमात्र MNRE दिल्ली अवार्डेड सोलर हाउस,
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं
1: और चले आएं ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर, काली पुतली चौक, मार्केटिंग सोसाइटी के ऊपर, बालाघाट।
2: मोबाइल नंबर 8770854830,
1: 7581938175।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट, और आज है फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक KK को याद करने का दिन, क्योंकि आज ही की तिथि में KK ने अंतिम सांस ली थी। KK का जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में हुआ था और 31 मई 2022 को कोलकाता में 53 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा किया। KK का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत था। KK का पहला फिल्मी गाना 1996 में आई फिल्म माचिस में था, बोल थे छोड़ आए हम वो गलियां।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: श्रोताओं, गुड इवनिंग। बालाघाट कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे फिल्म जगत के जाने माने पार्श्व गायक केकी की। बॉलीवुड में आने से पहले केके ने 11 भाषाओं में 3500 से अधिक जिंगल्स गाए। केके के डेब्यू एल्बम 1999 में पल और यारो थे, जो कि स्कूल और कॉलेज के फेयरवेल में गाए जाते हैं। इन एल्बम को बेस्ट सोलो एल्बम का स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला है। केके के मशहूर फिल्मी गीतों की हम बात करें तो दिल चाहता है फिल्म में, कोई कहे कहता रहे, बचना ए हसीनों में खुदा जाने, ओम शांति ओम में, आँखों में तेरी, जन्नत फिल्म में, जरा सी दिल में दे जगह तू, गैंगस्टर फिल्म में तू ही मेरी शब है और बजरंगी भाईजान में तू जो मिला। श्रोताओं, हम बात करते हैं उस सुप्रसिद्ध गीत की जिसमें केके रातों रात मशहूर हो गए। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। बोल थे तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। आज भी केके को उनकी सुरीली आवाज़ के फिल्मी गीतों के लिए याद किया जाता है। 31 मई 2022 को कोलकाता में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। हम केके को सादर नमन करते हैं उन्हीं की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के इस गीत से।

0: श्रोताओं, ये था आज का हमारा कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट। अब इस कार्यक्रम से आशीष सेंद्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट।
0: गुड इवनिंग बालाघाट। श्रोताओं, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। शाम के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रेडियो रिपोर्ट। संकलन और वाचन है रविशंकर दुबे का, प्रस्तुति है कुंवर विक्रम सिंह की।

0: श्रोताओं, आज है 31 मई 2026। ये तारीख इसलिए खास है क्योंकि आज समूचा विश्व तंबाकू निषेध दिवस को बतौर मुहिम मना रहा है। आकाशवाणी परिवार भी नशा मुक्ति के ऐसे संकल्पों के प्रति हमेशा अग्रणी रहा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ये रेडियो रिपोर्ट। श्रोताओं नमस्कार, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर अपनी रेडियो रिपोर्ट के साथ मैं रविशंकर दुबे, आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोताओं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम बतौर मुहिम हमने बात की एक गृहिणी से। उन्होंने अपने अनुभव शेयर करते हुए हमें बताया,
1: ये हमारे देश के लिए बहुत कठिन समस्या है और ये एडिक्शन जो है मोस्टली बहुत बार अभी देखा गया है कि महिलाओं में भी है। लोग बोलते हैं कि ये टेंशन के कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर योगा द्वारा हम अपना मनोबल बनाए रखें और इस चीज़ पर नियंत्रण करना चाहें, जैसे हमारी दीदी सिखाती हैं या और भी जगह बहुत संस्थाएं हैं जिन्होंने ये चीज़ की है कि भाई इस चीज़ पे कंट्रोल रखें, ये हमारे परिवार के लिए बहुत हानिकारक है। सिर्फ इसमें पैसे का भाई व्यर्थ जाना नहीं होता है, मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चों पर परिवार पर बहुत असर पड़ता है। और अगर ये चीज़ नहीं रहती है तो शायद हमारे परिवार खुशहाल रहेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा उपाय ये करना पड़ेगा कि हम चाहें कि शुरू से बच्चों में इस चीज़ की जागृति रखें कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, और अपने बड़ों में भी या उनका वातावरण ऐसा रखें। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अपने घर से, उसके बाद उनके स्कूल कॉलेज से और फिर अपने पड़ोस से, ये बहुत चीज़ महत्व रखती है। तो बच्चों को कोशिश करें इन ऐप वालों से दूर रखें, और या तो फिर अपने बच्चों को समझाते रहें कि बेटा ये बात गलत है। अगर बड़ों में भी है तो उसके लिए हम कुछ उपाय करें, जैसे कि योगा वगैरह बताए गए हैं, मेडिटेशन बताया गया है, और कोशिश करें कि उनको कोई ऐसा टेंशन ना दें जिससे कि वो उस तरफ अग्रसर हो कि भाई हमें ये नशा करना ही है। तो वो चीज़ से हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, ऐसी मेरी सोच है कि भाई इन चीज़ों के लिए हमें बहुत चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। और कुछ योगासन और कुछ जो सलाहकार ऐसे हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अपनी ऐसी क्लासेस चलाते हैं कि हमारे भाई कोई सेशन ऐसे लेते हैं कि भाई हम किसी को समझाएं, कन्वेंस कर सकें, तो हमें उन एडिक्ट लोगों को वो सेशन भी अटेंड कराने चाहिए।
0: श्रोताओं, तंबाकू की निषेधता पर प्रहार करते हुए हमारी मुलाकात हुई एक सेवानिवृत्त व्याख्याता से। उन्होंने कहा, विद्यालय परिसर में तंबाकू व अन्य नशीले पदार्थों की मौजूदगी भविष्य के गंभीर परिणामों को इंगित करती है। इसके अलावा उन्होंने विस्तार से बताया,
2: मैं भी जब छोटी थी तो भी मैंने देखा था और अपने पिताजी से मैंने पूछा था कि ये बीड़ी सिगरेट वाले पीने वालों के लिए कोई कानून नहीं है क्या। तो उन्होंने मुझे बताया था, बचपन से मुझे पता है कि बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, नियम बने हुए हैं और उसको फॉलो भी किया जा रहा है। तो धीरे धीरे समय के साथ मैंने देखा कि ये बहुत चीज़ें कंट्रोल हुई, और उसको मैंने पढ़ा भी कि पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना,

0: टोबैको खाना, थूकना, ये सब मना है। और अब मैं मार्क कर रही हूँ कि समय के साथ साथ यदि उसका कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है तो ये आदत बहुत बढ़ती जा रही है। पहले मैं भी टोक देती थी, ट्रेन में रिक्शे वाले पीते थे या और कोई पब्लिक प्लेस पर पीता था तो उसके लिए, या पब्लिक प्लेस पर नहीं भी हो तो आज की डेट में ये आदत बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, जिसको हम लोगों को कंट्रोल करना है। और हमारा फ़र्ज़ बनता है बड़े होने का कि हम एज अभिभावक, पेरेंट या जो भी बड़े हैं, वो बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे, उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, उनको कैसे बहलाकर इन चीज़ों से निकालना है, उसको रोकें। आज के समय में सारे पेरेंट्स ज़्यादातर जॉब में हैं, मदर्स भी वर्किंग हैं, कहीं कहीं पर इन सब का हमें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो इतना लंबा जॉब होता है कि बच्चों के लिए समय नहीं मिलता। और जो हेल्पर या सर्वेंट रखते हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों ने सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रखे हैं अपने घरों में जो जॉब करते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो देखकर अपने मोबाइल में पूरी लोकेशन और सीन वीन देखते रहते हैं। पर ठीक है, नौकरी भी कहीं कहीं ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम उसको कैसे कंट्रोल करें कि हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकें। अब ये बात आती है कि 21वीं सदी में भारत विश्व में किस नज़रिए से देखा जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि सारे विश्व की नज़र तो भारत पर ही है। भारत एक बहुत ही आगे बढ़ने वाला अग्रणी देश है, जो हर मामले में आगे बढ़ रहा है। पुरातन समय से हम लोग मेडिटेशन और योगा के लिए बहुत ही प्रचलित हैं, जाने जाते हैं हमारे वेद उपनिषद में भी, और उसी से हमें अच्छा आचरण और अच्छी आदतें मिलती हैं। इन्हीं में की एक बुरी आदत जो तम्बाकू की है, वो चली तो पुराने समय से आ रही है, लेकिन अभी ये नए रूप में बच्चों में, युवाओं में देखी जा रही है। और शुरू कैसे होती है कि छोटी छोटी कहीं टॉफी, कहीं वो गुटखा, पान तंबाकू के छोटे छोटे पाउच, उसके कुछ और नाम बदल कर भी रखे जाते होंगे, हो सकता है। पहले ये ज़्यादातर दुकानें स्कूलों के पास रहती थी और वहाँ से फिर वो बड़े नशे में बदल जाती हैं। आज के समय का तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतना खतरनाक हाल है कि कौन सी ई सिगरेट और कौन से ई टाइप के नशे, माने ये भी एक अलग बहुत कठिन सा समय हो गया है कि हम इससे कैसे उभर के आएंगे। और इसके लिए हमें बहुत बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी अपने बच्चों और युवाओं को सुरक्षित करने के लिए। तो नज़र तो सबकी भारत पर रहती है, पर भारत के जो अग्रणी लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो प्रचलित हैं, बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं, डिग्निटीज़ हैं, उनको भी चाहिए कि थोड़ा इस विषय में, जैसे वो और चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट देते हैं, विज्ञापन देते हैं, वो इधर आएं और दें। और ये भी आप देखिएगा कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, उस पर लिखा रहता है लेकिन वो बिकती रहती है, शराब बिकती रहती है, मगर क्या किया जाए, वो तो एक अलग नियम है। पर हमें इस बात का हमेशा अवलोकन करते रहना है कि बच्चे के व्यवहार में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, उसको मापदंड करते हुए हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्यों ये ऐसा कर रहा है। और इसके लिए सबसे पहला स्थान है स्कूल।
1: श्रोताओं, तंबाकू निषेधता अभियान पर हमने बात की डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे, जनरल फिजिशियन से। उन्होंने इस अवसर पर इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए हमें सिलसिलेवारे ढंग से जानकारी देते हुए बताया कि इसे अभी रोका नहीं गया तो भविष्य में इसके परिणाम काफ़ी गंभीर होंगे।
2: तंबाकू और तंबाकू से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, उनके कंजप्शन को देखते हुए, उनके यूज़ को देखते हुए, जो युवा पीढ़ी और बुज़ुर्ग जो इसकी लत के आदि हो गए, जिसके कारण एक तरीके से जो विभिन्न बीमारियों की समस्या खड़ी हुई है, उसको रोकने के लिए और लोगों को तंबाकू के जो प्रभाव हैं, गलत प्रभाव हैं, उसको उसके बारे में जागरूक करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग जागरूक हो सकें और तंबाकू के सेवन से बच सकें।

0: 2026 की जो थीम है वो है आकर्षण का पर्दाफाश, जो निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला कैसे करेंगे उस बारे में बताती है। इसमें क्या होता है, आकर्षण का पर्दाफाश इन द सेंस, जो एक आज का जो ग्लैमरस जो दुनिया है उसमें युवा हो गए या काम करने वाला वर्ग हो गया, आज कहीं ना कहीं जो किसी न किसी के इन्फ्लुएंस से प्रभावित है और युवा सिगरेट और बीड़ी पीने का आदि हो गया है। और पुराने समय में जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो उनमें भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा बीड़ी या तंबाकू को कंज्यूम करने की लत हो गई थी। तो जो पर्दाफाश है वो इस चीज़ को डिनोट करता है कि इस जो इसकी लत है, तंबाकू के बने प्रोडक्टों की लत है, इसके कारण हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान हो रहा है, किन किन विभिन्न बीमारियों का कारण यह तंबाकू बन रही है या इससे होने वाले नुकसान क्या है, उस बारे में सचेत करने हेतु जो ये थीम रखी गई है कि आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला।
1: सर एक और बात हम ये जानना चाहेंगे कि तंबाकू केवल लोग इसको एक औषधि के रूप में देखते हैं, एक पत्ता होता है, जंगली पत्ता लोग उसे खाते हैं, ये एक नशीला पदार्थ होता है, मगर सर इसके जो प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहे हैं हम आए दिन विज्ञान विज्ञापनों में देख रहे हैं और दूसरे माध्यमों से भी हम लोग देखते हैं, तो ये कौन कौन से माध्यम होते हैं सर जो तंबाकू हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है।
0: तंबाकू के यूज़ करने वाले आप देखेंगे पहले समय में तो कुछ पेस्ट टाइप का आया करता था या पाउडर टाइप का आया करता था, तो कुछ लोग उसको एज अ मंजन यूज़ करते थे, कुछ लोग उसको एज अ नसवार यूज़ करते थे, जो नाकों में नाक से डाल करके उसको सूंघा जाता था, बीड़ी बनाई जाती थी, सिगरेट बनाई जाती है ना, तो फिर गुटखा का चलन है जो चबा करके खाया जाता है। तो ये विभिन्न तरह के प्रोडक्ट जो विभिन्न माध्यमों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उसके अनुरूप यह बीमारियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या लंबे समय तक के इसके उपयोग करने के कारण उसका कारण बनते हैं।
1: लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि तंबाकू के सेवन से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत अच्छा रहता है, ऐसा पुराने बुजुर्ग लोग भी कहें, तो आज की पीढ़ियां उसको फॉलो करती, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं सर इस भ्रांति को।
0: देखिए यह एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, मतलब सोचने का फैक्टर है कि जब भी हम किसी भी चीज़ के आदी हो जाते हैं या हमें उसकी लत लग जाती है ना, यह थोड़ी देर के लिए सेटिस्फैक्टरी हो सकता है, हमारे मन को संतुष्ट कर सकता है, किंतु लंबे समय में जो इसके दूरगामी जो परिणाम है, लंबे समय में जो इसके परिणाम देखने मिलते हैं, यह बहुत ही अन्य अन्य प्रकार की बीमारियों को न्योता देते हैं। अब जैसे जो तंबाकू के पाउडर की जो नसवार बनती थी जिसे हम नाक से सूंघा करते थे पुराने ज़माने के लोग या कई लोग आज भी यूज़ करते हैं, उसके कारण नाक से जुड़ी हुई समस्याएं, गले से जुड़ी हुई समस्याएं, जो वो जिस रास्ते तक के जाता है उस रास्ते तक की समस्याएं, फेफड़े की समस्याएं उत्पन्न होती। सिगरेट या बीड़ी के सेवन से हमारे जो धुआँ जाता है तंबाकू का, उसमें बहुत ज़्यादा टार होता है, निकोटीन होता है, हमारे फेफड़े को डैमेज करता है, हमारे जो श्वास नली है या मुंह है उसको डैमेज करता है, साथ ही साथ इसके अंदर का निकोटीन हमारे जो हृदय की वेसल्स है या हमारे शरीर की अन्य पतली वेसल्स हैं उनको, जो रक्त वाहिनी है उनको हार्ड करता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर की समस्याएं या स्ट्रोक की समस्याएं होती हैं, ठीक है। और जो तंबाकू जो चबाई जाती है चूने के साथ मिक्स करके या अन्य उसमें केमिकल मिला करके जो खाया जाता है, वो लगातार हमारे मुंह में रहने के कारण मुंह की बीमारियां, जिसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसमें मुंह बहुत सख्त हो जाता है और कई बार हमारे मुंह का टेस्ट चला जाता है, हर चीज़ तीखी लगती है, उसके अलावा हमारे जो पाचन तंत्र के अन्य अंग है, मुंह में कई बार अल्सर पैदा कर देना, लंबे समय में कैंसर को न्योता देना होता है कि लंबे समय तक हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो कई बार कैंसर हो जाता है, ऐसे ही फेफड़े में होता है सिगरेट के कारण, है ना। और पाचन तंत्र में भी जब तंबाकू शरीर में अंदर तक जो लोग थूकते नहीं या जो उसको गिटकते हैं, तो वो लंबे समय में हमारे पाचन तंत्र को भी डिस्टर्ब करती है। यह एक हम ये सोचते हैं कि हम कुछ दिन तक के उसका आनंद लेते हैं, लेकिन लंबे

0: समय में हमारे श्वास नली से लेकर के हमारे पाचन तंत्र की नली से लेकर के हमारे आहार नाल को और अंदर के अन्य जो आर्गन है जो खाना पचाते हैं इनमें भी प्रभाव दिखाती है अपना। असाध्य रोगी की बात करें तो लंबे समय में तंबाकू का किसी भी तरीके का सेवन अपने आप में कैंसर को न्योता देना है जी। है ना, और कि आप जानते हैं कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि हम आज भी देखते हैं कि कभी भी हम सिनेमा घरों में जाते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा एड चलता ही है कि पहले मैं तंबाकू का सेवन करता था, आज मुझे मेरे मुंह का कैंसर हो गया है या आहार नाल का कैंसर हो गया है और हम इतने दिन तक के इस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं और अंततः बहुत दुखदायी स्थिति हुई।
1: श्रोताओं, नशा कोई भी हो, जब हम उसके चंगुल में फंस जाते हैं तब दवाएँ बेअसर हो जाती हैं, दुआओं पर उम्मीद टिकी रहती है, किंतु योग एक ऐसी विधा है जिसे अपनाकर नशे की लत पर हम काबू पा सकते हैं। इन सभी बातों पर प्रकाश डालते हुए आप हैं जानी मानी योग शिक्षिका श्रीमती रोशनी सचदेव।
2: नमस्ते, मैं रोशनी सचदेव एक योगा शिक्षिका हूँ। मैं काफ़ी सालों से योगा सिखा रही हूँ। मेरा मकसद है सभी को योग करवा के उनकी सेहत ठीक करना।
3: सबसे पहले तो मैम आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि आपने ये योग की जो विधा है उसको आपने कहाँ से सीखा है और कब से आप करा रहे हैं?
2: मैंने 2002 में हरिद्वार जाकर के क्लासेस किए, हो गए हैं इसको 12 से 13 साल हो रहे हैं। मैं कंटिन्यू इस फील्ड में वर्क कर रही हूँ।
3: अब बात करते हैं मैम कि जैसे कि आज 31 मई है, आज पूरा हम क्या पूरा विश्व मना रहा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हम आपसे ये जानना चाहते हैं बतौर योग शिक्षिका कि तंबाकू की निषेधता पर योग की क्या भूमिका है?
2: तंबाकू की लत छोड़ने में योग और प्राणायाम एक बेहद शक्तिशाली प्राकृतिक उपचार है। यह शारीरिक तनाव को कम करने में, मानसिक तनाव को दूर करने में और इच्छा शक्ति को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे कि तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट वगैरह वगैरह से बने उत्पादों को का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। एक योग शिक्षिका और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति के रूप में मैं इसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पतन की दृष्टि से देखती हूँ।
3: जैसे कोई मैम कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि मुझे तंबाकू छोड़ना है और मैं नशे की लत मुझे लग चुकी है, आप अपनी योग विधा के अंतर्गत उसे कौन सी योगिक क्रियाएं बताने की सलाह देती हैं, क्या करने की सलाह देती है और क्या मानते हैं कि योग नशा मुक्ति करने के लिए एक अच्छा साधन है, क्या मानते हैं आप?
2: है कि योग और प्राणायाम नियमित रूप से करने से सामान्य बनाया जा सकता है, क्योंकि योग प्राणायाम शारीरिक मानसिक तनाव को कम करके फेफड़ों को शुद्ध करते हैं और निकोटीन की तीव्र इच्छा से नियंत्रण करने में मदद करते हैं। तो इसको अपने को डेली में ही इसको रूटीन में लेना होगा, तभी हम इसको ठीक कर पाएंगे।
3: महिलाओं में भी तंबाकू की लत हम देख रहे हैं, ग्रामीण स्तरों में, शहरी स्तरों में आजकल ज़्यादा बढ़ गई हैं। उनके निदान के लिए आप कोई शिविर अटेंड करती हैं, कौन कौन से कार्यक्रम आप चलाते हैं?
2: महिलाओं में तंबाकू की बढ़ती लत एक बेहद चिंताजनक और गंभीर सामाजिक स्वास्थ्य समस्या है। इसे केवल एक व्यक्तिगत आदत के रूप में नहीं बल्कि गहरे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारणों से जुड़ी एक जटिल चुनौती की नजरिए से देखती हूँ। तंबाकू की लत से महिलाओं में भांजपन और शरीर के पूरे आंतरिक अंगों में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे पूरे समाज में

0: पर देश को बहुत नुकसान पहुंच रहा है।
1: पूरे भारत को नशा मुक्त करने के लिए योग कहां तक सहायक है?
0: योग के माध्यम से हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होकर नशा मुक्त परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। योग से विचारों में सकारात्मक आत्मनियंत्रण, जो विल पावर है, और इच्छा शक्ति का विकास होता है, जो किसी भी प्रकार की लत से बाहर निकलने में प्रभावी है।
2: श्रोताओं, तंबाकू भले ही सस्ता नशा हो सकता है, किंतु इसके दुष्परिणामों के प्रभाव परिवार के अलावा समाज को भी प्रभावित करते हैं। इसी मंशा से हमने बात की जाने माने समाज सेवी श्री विकास हजारी हट्टा बालाघाट से। उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा,
1: सब मैं ये जानना चाहता हूँ हजारी साहब कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो समाज में इसकी जो स्थिति है वो कैसी है, आप किस रूप में इसे देखते हैं?
3: देखिए, समाज में तो बहुत सी अच्छाइयाँ भी होती हैं, बहुत सी बुराइयाँ भी होती हैं, और सामाजिक व्यक्ति जो होते हैं वो अच्छे समाज के निर्माण करने के लिए, जो समाज सेवी कहलाते हैं, वो अच्छे समाज के निर्माण के लिए अपना दायित्व भी निर्वाहित करते हैं, और कुछ बुराइयाँ, सामाजिक बुराई जिसको कहा जाए, उसमें से मैं एक तंबाकू को भी मानता हूँ। तंबाकू क्या है? एक नशा। जिस तरह शराब का नशा आदमी को बेहोश करता है, इसी तरह तंबाकू का नशा अर्ध बेहोशी लाता है। अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि शराब को लोग बैठ के गिलास में लेके पीते हैं, जो सबको दस को दिखता है, तंबाकू आपस में बांट के खाते हैं, तो मैं इसको एक सामाजिक बुराई मानता हूँ। और सामाजिक बुराई इसलिए कि नशा किसी भी प्रकार का हो, वो समाज में कभी अच्छाई या भलाई नहीं कर सकता। तंबाकू के बारे में आपने सुना होगा कि तरह तरह की तंबाकू होती है, जैसे जर्दा, सतारा, कुछ नाम सुना होगा, जैसे चावल की वैरायटी ना, बारीक और मोटा, ऐसी तंबाकू भी कई वैरायटी में होती है। हर आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे शराब में भी कई प्रकार की शराब आ जाती है, इसी तरह तंबाकू भी कई प्रकार की आती है। आपने बीड़ी वालों का अगर सुना होगा कि मनोहर बीड़ी, सात नंबर बीड़ी, तो बंदरा बीड़ी, ऐसी बहुत सी बीड़ियाँ सुना होगा। ये क्या है? तंबाकू का अलग अलग प्रकार का उपयोग, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि लोग अपनी परेशानियों से लड़ते नहीं, भागते हैं। अब भागने का उनको सुलभ रास्ता क्या दिखता है? किसी भी प्रकार का नशा। ज़्यादा नशा करोगे तो महंगे आएंगे शराब के नशे, उसके पैसे चाहिए। लेकिन तंबाकू एक सस्ता नशा है, जो घर बैठे उपलब्ध है, हर कहीं उपलब्ध है। एक दूसरे से आप ये भी महसूस करिएगा, नशे में का जो आदि होता है व्यक्ति, उसमें मित्रता बड़े जल्दी आती है। क्यों? एक दूसरे की वो आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं भाई। उसको तलब लगी यार, कुछ हो चाहिए, कुछ चाहिए, तो ढूंढता है आजू बाजू, तो जहाँ से मिला पट से, जो कि वो आदि होता है, तो अरे भाई ये आप भी ले लो, और दोनों आपस में एक दूसरे का दुख बांट लेते हैं एक प्रकार से। तो इसको हम अच्छाई तो कह नहीं सकते।
1: युवाओं में बढ़ता जो इसका चलन है, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं?
3: मेरा ऐसा मानना है कि युवा मन जो होता है, ये भटकाव से प्रेरित होता है। डिसीजन, अपरिपक्व मस्तिष्क जिसको हम कहें युवावस्था का, भटकाव में होता है युवा, और उसमें जोश तो होता है, लेकिन होश के लिए अगर पर्याप्त मार्गदर्शन उसे नहीं मिला, तो उसे भटकते टाइम नहीं लगेगा। आज का युवा, मैं समझता हूँ, कोई सिखाया नहीं जाता युवा को ये गंदी आदतें, या तंबाकू खाना, या बीड़ी पीना, या सिगरेट पीना। ये एक अपरिपक्व मस्तिष्क की उपज है कि किसी को उसने देखा तंबाकू खाते या बीड़ी पीते या सिगरेट पीते, और उससे वो उत्प्रेरित हो गया। तो सिगरेट न पीते हुए उसने तंबाकू का सेवन कर लिया, तंबाकू खाया, हल्का सा उसको नशा या गन्नाटा, दूसरी बार कभी और कभी मौका मिला तो फिर कभी ले लिया। हो सकता है इसी तरह बार बार लेते गया और उसकी आदतें बनते चले गई। अब वो आदि हो गया कुछ दो चार बार के बाद। जिस तरह हम बच्चे को कभी चाहे, भाई बच्चा तो जब पैदा होता है दूध पी रहा है, लेकिन उसको हम कुछ दिनों बाद अन्न खिलाते हैं, उसके बाद वो कुछ दिनों ऑटोमेटिकली घर में सबको चाय पीते देखता है, तो वो भी चाय पीना शुरू कर देता है। चूँकि चाय मीठी लगती है, तो उसकी

0: आदत बन जाती है। ऐसी मैं समझता हूँ तमाकू का है कि युवा उसको देखता है, भटकता है और उसने किसी प्रकार का, आपने एक देखा ये आजकल क्या बोला जाए पैकेट 5 रुपए 10 रुपए के, वो क्या मैं तो है नाम भी नहीं जानता, तमाकू प्रोडक्ट ऐसा पान मसाला। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी प्रकार का जो पैक मसाले आते हैं पान मसाले खास तौर पर विशेष तौर पर, ये कहीं ना कहीं तमाकू से रिलेटेड होते हैं, किसी ना किसी प्रकार से इनमें तमाकू होती ही है। और तमाकू आदमी भटकाव लाती है जिसमें युवा वर्ग हमारा इसमें फंसता जा रहा है। मैं समझता हूँ इसमें युवाओं को मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है या कहीं ना कहीं इनको रोकने के लिए आवश्यकता पड़ेगी।
1: मुझे ऐसा लगता है कि आपके समक्ष एक आध ऐसी घटना या दुर्घटना सामने आई है जो तम्बाकू के कारण हुई है, वो शेयर करें।
0: ये क्या अनेक घटना है ऐसी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन मैं समझता हूँ संभ्रांत परिवारों में भी ऐसा होता है। मेरे एक परिचित हैं एक्साइज कमिश्नर हो रिटायर हो चुके हैं, मैंने बचपन में उनकी माताजी को देखा, वो रोज तम्बाकू खाया करती थी, मैंने आँखों से देखा उनको खाते हुए। कालांतर में उनको गले का कैंसर हो गया आहार नाल में, और उस समय हम तो छोटे थे उतना हमको समझता नहीं था ये सब चीज़ें, लेकिन बाद में पता चला कि तम्बाकू के कारण हुआ, बहुत बड़ा फोड़ा हुआ, अंत में उन्होंने सुसाइड कर लिया दर्द के मारे तड़प तड़प के। उस समय कैंसर एक नई नई बीमारी के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, उसकी कोई रोकथाम नहीं थी, कोई दवाइयाँ नहीं थी, तो दर्द इतना खतरनाक इतना तीखा दर्द होता है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं समझता हूँ कि जो नशे के आदि हैं या तम्बाकू खाने वाले अगर एक बार उस दर्द वाले मनुष्य को देख ले तो अपने आप ही उसकी आदत छूट जाएगी।
1: हजारी जी ये भी बताएं कि तम्बाकू से क्या क्या नुकसान है एक्चुअली।
0: देखिए मैं मेडिकल का एक छात्र रहा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि तम्बाकू जैसे मैंने बताया कि नशा तो है ही, अर्धमूर्छित अवस्था में ले आता है मस्तिष्क को, और सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है ना, हम जब खाते हैं तो जबान से शुरू होता है टेस्ट के रूप में, और जबान से आके गले से आंतों में आ जाता है, आंतों से होते हुए आमाशय तक जाता है, और आमाशय में जाने के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन संस्थान जिसको हम बोलते हैं इसको डिस्टर्ब करता है, और वहाँ जाकर के ये भोजन को पचने में चूँकि रस की जो आवश्यकता है, चूँकि इसका ये निकोटीन जाता है जो भोजन पचाने में, जैसे आप देखिएगा चाय पीने वाले, चाय में भी निकोटीन है, चाय पीने वाले को भूख नहीं लगती, ऐसी तम्बाकू खाने वाले को भूख नहीं लगेगी। अगर खाली पेट में निकोटीन जब पेट में जाता है तो ये एसिड पैदा करता है वहाँ, अम्ल, अम्ल बनाएगा तो पेट में जलन शुरू होगी, दर्द शुरू, जिसको कई लोग दर्द के रूप में कहते हैं, जलन होती है, खट्टी डगारे आना शुरू होती है, और गैस्ट्रिक ट्रबल शुरू होगा, एसिडिटी होगी, ऐसी जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल हो, गैस्ट्रिक जैसे मस्तिष्क में चक्कर आने जैसे शुरू होंगे, उसके बाद पेट में धीरे से ये अल्सरेशन की प्रोसेस पे आ जाएगा, अल्सर बना देता है, और अल्सर का अगर कंट्रोल नहीं हो पाया तो ये कैंसर, अंततः कैंसर बन जाएगा, आमाशय का कैंसर के रूप में इसको जाना जा सकता है। कि आमाशय के कैंसर का मुख्य कारण या गले के या आंतों के कैंसर का मुख्य कारण अगर आप कह सकते हैं तो ये हम तम्बाकू को कह सकते हैं। आपको अगर अपने आप को बचाना है अल्सरेशन और कोई भी बीमारी, दुनिया में कोई भी बीमारी की जिसकी शुरुआत पेट से ही होती है, आपके पेट में जहाँ गड़बड़ी शुरू हुई ऑटोमेटिकली लीवर सिस्टम खराब, तो किडनी खराब, हर चीज़ धीरे धीरे आने, उसके जैसे यहाँ पर गैस बनी तो मस्तिष्क में चक्कर आना शुरू हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि पेट से मस्तिष्क का क्या संबंध है, आँखों में आप देखिएगा तो आँखों में आपको जो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो ये सब कारण।
2: श्रोताओं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर यह रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है। वाचन और संकलन था रविशंकर दुबे का, प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रेडियो रिपोर्ट। संकलन और वाचन था रविशंकर दुबे का। प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। अब सुनिए आज की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से थोड़ी देर बाद 7:05 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र अंग्रेजी समाचारों के लिए। 7:10 पर आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचार दिए जाएंगे, हम रिले करेंगे। 7:21 पर हमारे केंद्र से आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 7:30 पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा।

रात 8 बजे सुगम संगीत का कार्यक्रम आप हमारे स्टूडियो से सुन सकते हैं। रात 8:15 पर हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की। आज रात 8:30 पर हमारे केंद्र से आप सुन सकेंगे पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि पॉप म्यूजिक के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे हैरी आनंद के गाए कुछ पॉप सॉन्ग। रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9 और 9:15 पर स्पॉटलाइट समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 9:30 पर आप सुनिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई की कार्यक्रम। रात 10:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। रात 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 11:10 पर हमारी प्रसारण सभा समाप्त होगी। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी बालाघाट है, 7:05 होने को है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र अंग्रेजी समाचारों के लिए।

0: 10 मिनट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है।
2: सुन फटे फटे पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ नया नोट मिलेगा।
2: हाँ जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
4: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया तो देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जोड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांदीपनि विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा,
1: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की, जिन्होंने मध्य टोलाब क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों का समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँवों तक पहुँचाना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, DDRF, SDRF, NDRF और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आपात स्थिति के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र हेल्पलाइन नंबर है 89587573355 और 82183263386 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों को द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्रित की जाएगी।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार

0: सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। उन्होंने 121 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि के मां शारदा सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर, महाराणा प्रताप सांदीपनी विद्यालय अकोदिया, मिहिर भोज सांदीपनी विद्यालय सुंदर सिंह और राजा भोज सांदीपनी विद्यालय पोचानेर के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत प्रदेश सरकार कृषि, किसान और गांवों की समृद्धि के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने, दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा,
2: दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार आवारा पशुओं के लिए गौशाला में भी 3-4 प्रकार जो पंचायत गौशाला खोलती है गौशाला में काम कर रहे हैं। नगरी निकाय में पहले पिंजरा पोल खड़क बनते थे, हमने कहा पिंजरा पोल खड़क बनाने की जरूरत नहीं, गौ माता देवी देवता का वास उसमें। ऐसे में अगर कोई घर में नहीं रखना चाहता और वो खिड़क न पहुंचा देता तो कोई बात नहीं, कोई गौशाला नगरी निकाय जहाँ नगर निगम भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर ग्वालियर में तो 9,000 किसानों की आय बढ़ाने की जो हमारी प्रतिबद्धता, मुझे इस बात का संतोष है कि आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से साक्षी के आधार पर हमने अपने दूध का कलेक्शन 10 लाख लीटर प्रति मध्यप्रदेश से हमारे जिला प्रति लीटर था उसको बढ़ाकर के 12 से 15 लाख लीटर तक ले गए और आगे बढ़ाकर के देश के अंदर हमारा जो सहयोग 12% का था इसको 20% तक ले जाकर के हमारे किसानों की आय दूध के माध्यम से भी बढ़ना चाहिए।
1: एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू की बजाय आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई से 3 जून तक प्रदेश में आंधी, बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। जबलपुर, सतना और खंडवा में जन जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आज वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीमच में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों के श्रेणी सुधार में जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। शिवपुरी में 7 दिवसीय कृत्रिम अंग निर्माण और वितरण शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। और श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। 7:21 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, ये गीत है बाहर आने तक फिल्म से। आवाज दी है अनवर ने, शब्दकार हैं ताजदार ताज ने, संगीतकार हैं राजेश रोशन। श्रोताओं, शब्दकार हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं, ताजदार ताज।

श्रोताओं, ये गीत था बाहर आने तक फिल्म से, आवाज़ दी थी अनवर ने, शब्दकार थे ताजदार ताज, संगीतकार थे राजेश रोशन। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं शान और जुबिन की आवाज़ों में कांटे फिल्म का ये गीत। बोल लिखे देव कोहली ने, धुन तैयार की है आनंद राज आनंद ने।

शान के गाए कांटे फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा।

हमारे फोन नंबर ध्यान से लिख लीजिए। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है एसटीडी कोड 0755 के बाद 2660902, एक और नंबर 2660903। इन दोनों नंबरों पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हेलोग्राम।

0: आपका कार्यक्रम में।
1: जैसा कि हमारा विषय है आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन एवं समसामयिक कार्य, सवाल आए उससे पहले सर मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि उर्वरक प्रबंधन से क्या आशय है।
2: देखिए सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि उर्वरक प्रबंधन का मतलब ये है कि जब हम जैसे खरीफ फसल आ रही है उन खरीफ फसलों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब पानी पड़ती है, जब पानी बरसात के दौरान बहुत सारे उर्वरक हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें ये क्या करती है पानी के साथ बह जाती है। यदि आपने इसका सही प्रबंधन नहीं किया तो आपका उर्वरक डालने का कोई मतलब नहीं रह जाता, विशेष रूप से बरसात सीजन में। तो यहाँ पर हम किसान भाइयों को समसायिक कार्यों के अलावा हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस ये रहेगा कि उनमें जो उर्वरक है उसमें किसी भी प्रकार का उर्वरक की जो क्षमता है वो सही बनी रहे, उनका सही उपयोग हो, इस बात पे हम आज चर्चा करेंगे। और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये कि बरसात के मौसम में खरीफ सब्जियों फसलों में सबसे पहले हम उर्वरक का अपना लेने का तरीका, उनको संरक्षित करने का तरीका, उनका प्रबंधन के तरीके पर अपन ध्यान देंगे।
1: हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनसे एक बार बात करते हैं कि हेलो
3: गुड्डू चौबे बोल रहे बमोरी ढूंढा जिला सागर से।
1: गुड्डू चौबे जी बमोरी सागर से बोल रहे हैं, कैसे हैं गुड्डू जी?
3: बढ़िया है साहब, खूब अच्छे हैं।
1: अबे मौसम बिगड़ो है तो सागर को क्या हाल है?
3: और बात रहे हैं कहूँ आसपास पानी गिरा, कहूँ तो थोड़ी बहुत ओरे ओरे गिर गए, आधी तूफान चली है।
1: अच्छा तो
3: हम है उसे कचूरी बहुत बूंदा पानी भाई।
1: चलो अच्छी बात है, अब वो तपा लगे हैं दादा, तपा में पानी गिर वो ठीक नहीं होए, है ना?
3: खराब
1: रहे थे। अब वो कह देना कि जेठ मास जो तपे निराशा तो जानो वर्षा की आशा
3: है। अभी तो जो बने हैं जरूरी है, तपा भी जरूरी है सब।
1: अब जा बताओ कि खरीफ में का योजना बनाई है, आज को विषय जो है वो जो ही है कि खरीफ में अपने
3: पूछा है साहब, जैसे अपन सोयाबीन बहने तो कम से कम खाद डालने या बिना खाद को कैसे हो जाए?
1: बड़ो अच्छो नोनो सवाल पूछो है सर, बताइए।
2: हाँ देखिए गुड्डू भाई, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि सोयाबीन की फसल में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की कम मात्रा का प्रयोग करना, क्योंकि ये दलहनी फसल है और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन खुद होता है।
1: नाइट्रोजन से मतलब यूरिया।
2: यूरिया जो जिसको नत्रजन अपन हिंदी में बोलते हैं, वो पौधा खुद बनाता है। तो यदि आप उसको ज्यादा प्रयोग कर दोगे तो पौधे में बीमारी लग सकती है, इसलिए आप उसमें कम से कम नाइट्रोजन का प्रयोग करें। ज्यादा से ज्यादा आप 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज्यादा प्रयोग न करें, ये हमारे किसान भाइयों को हम बताना चाहते।
1: धन्यवाद गुड्डू जी हमें फोन करने के लिए। और जैसा कि बड़ा अच्छा विषय अभी हमारे किसान भाई ने पूछा कि कैसे खाद डालें, कितनी मात्रा में खाद डालें, और उन्होंने एक शब्द और बोला कि बिना खाद के लगाएं क्या? तो बिना खाद के जो लगाना चाहते हैं सोयाबीन, उनके लिए क्या कहेंगे आप?
2: देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया वास्तव में, कि हम सभी किसान भाइयों से रासायनिक उर्वरक की तो हम कम आशा करते तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि मिट्टी स्वस्थ बनी रहेगी। लेकिन खरीफ मौसम में जो फसल है उनमें यदि आप बिना खाद के करें, विशेष रूप से गोबर की खाद, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
1: सही बात, अब वो ये कहते ना कि खाद पर है तो खेत, तो नहीं तो कूड़ा रेत।
2: हाँ बिल्कुल सही बात।
1: खाद जरूरी है पर जैविक खाद जरूरी है, है ना? हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में।
4: नमस्ते सर।
1: नमस्ते।
4: हरदयाल जाटव जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश।
1: हरदयाल जाटव जी बोल रहे हैं शिवपुरी से ना?
4: हाँ
1: जी। कैसे हैं आप वहाँ, मौसम कैसा है?
4: मौसम तो बढ़िया है, दो दिन अच्छा पानी बर रही है, हमी पानी।
1: अच्छा मौसम है। जी मैं वही जानना चाहता हूँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि पूरे मध्य प्रदेश से हमारे पास फोन आते हैं, पर मौसम कहाँ कैसा हो रहा है ये भी हमारे श्रोताओं को पता चलता रहे। क्या योजना है खरीफ में आपकी, बताएं ना?
4: आज की ये समस्या की मानी जब वर्षा होनी, जब मूंगफली देते हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए, माने कौन सा बीज और कौन सा खाद डालना चाहिए।
1: जी मूंगफली की बुआई का सही समय कब शुरू हो रहा है और कौन सी वैरायटी?
2: हाँ बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। खरीफ मौसम में मूंगफली

0: आप लगाएं, क्योंकि मूंगफली तिलहनी फसल है, तेल प्राप्त होता है इससे, और इस फसल को आप जितने बढ़िया सही समय पे आप लोग उत्पादन उतना अच्छा मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप इस जुलाई में, जुलाई के सीजन में जब भी आप 10-15 जुलाई के बाद आप उसका प्रयोग, आप उसका बुवाई कर सकते हो। उसमें बहुत सारी बुवाई, उसकी वैरायटी है, उनकी जाति बहुत गुच्छेदार आती है और कम गुच्छेदार आती है। आपको जिस प्रकार का चाहिए, बड़े दाना चाहिए या छोटा दाना चाहिए, आपको जैसी वैरायटी आपको चाहिए आप वहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र से ले लें। शिवपुरी में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ जो अच्छी वैरायटी मिले, वैसे बहुत सारी ब्रैग है, बहुत सारी वैरायटी है जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, वो आप वहाँ मिले या ना मिले ये अलग बात हो जाती है, लेकिन आप कृषि विज्ञान केंद्र से वो आप जाति का प्रयोग करके उसको बुवाई करें जुलाई के महीने में।
1: धन्यवाद फोन करने के लिए। सर, जैसे मूंगफली की बात करी गई है, मूंगफली लगाने के लिए वैरायटी तो ठीक है, वैरायटी मिल जाती है, लेकिन मूंगफली लगाने का तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या है?
0: देखिए, मूंगफली हमारे जो किसान भाई हैं, जैसे अपन ज्वार लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, सेम वही तरीका है उसका, अलग से तरीका नहीं। उसका भी बीज होता है, उस बीज को बोया जाता है।
1: नहीं, दूरी कितनी, गहराई
0: दूरी उसकी,
1: कितनी?
0: दूरी दूरी में बीज की उसकी कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वो बीज लगाया जाता है। और सबसे पहले हमारे किसान भाइयों खेत की तैयारी कर ले, उसमें और पोटास पहले डाल दे, यूरिया टुकड़ों में डाले, 50% यूरिया पहले डाले, उसके पास 50% डाले, उसको नाइट्रोजन फास्फोरस पूरी मात्रा में डाल के, और फिर उसको 2-3 बार डाल के, फिर 4थे दिन बाद आप बीज की बुवाई आप उसकी कर
1: कर
0: सकते हैं।
1: सकते हैं। एक कहा जाता है कि लाल मिट्टी हो, कंकर वाली मिट्टी हो, ये मूंगफली के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है, लाल मूंगफली हो या लाल मिट्टी के अलावा यदि आपकी थोड़ी सी रेतीली मिट्टी हो
1: हाँ,
0: उसमें मूंगफली बहुत अच्छी
1: बहुत अच्छी
0: होती है।
1: होती है।
0: तो हमारे
1: ठीक
0: किसान भाइयों को
1: जी,
0: इस पर ध्यान दें।
1: अगले श्रोता हमसे जुड़ गए हैं। हेलो
2: हेलो,
1: जी, स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा
2: हाँ
1: में।
2: जी सक्सेना जी, जयराम जी।
1: जय राम जी। मैं समझता हूँ ये गोलू भाई का तो नंबर नहीं है।
2: हाँ सर, बिल्कुल सही पकड़ो
1: अरे,
2: आपने वाला ने।
1: बहुत बहुत लंबे समय बाद आपकी आवाज़ कान में आई है गोलू भाई, है ना?
2: जी बताओ सर, कैसे हो आप?
1: बहुत बढ़िया है। और आपके वहाँ कैसी स्थिति है सागर की?
2: बस सर, हम आए थे अभी, मतलब 5-1 बजे एक झला पानी गिरा हुआ है कि सर जी, मतलब जामान के चलो बह करो तो
1: अच्छा,
2: और कहा है तो।
1: अब जो है ना कि मानसून जो है अब करीब आ जा रहा है, तो जे प्री मानसून कहा थे, जाकि बरसात तो शुरू हो जाते है। और वैसे भी दो जेठ हैं, तो जेठ एक तो निकर गए है, तो है ना भैया? तो अब
2: जी
1: जो
2: जी
1: वैसे
2: सर,
1: तो
2: उनको
1: जो
2: सर वो
1: हाँ
2: परिचय देता है, मैं
1: देवता।
2: ग्राम बिजोरा जिला सागर से गोलू अहरवार बात कर रहा हूँ जी। सर
1: अच्छा।
2: हम, ये हमारे प्रश्न ये था सर जी, मतलब जो मक्का का बीज रहता है, जैसा कि आप लोग भाटुआ में मक्का बोते हैं, तो वहाँ पे मतलब जिलक जाती जमीन, कोई ऐसा बीज नहीं है कि जमीन मतलब जिलक जाती तो मक्का का पेड़ मतलब खराब ना हो?
1: भटुआ में, मतलब के भटुआ बोले तो ऐसी जमीन जो
2: हाँ मतलब एकदम वो ज्यादा मतलब जमीन जी लग जाते हैं
1: झिलक
2: बोले के।
1: जाती,
2: हाँ
1: पानी नीचे से ऊपर आने लगता है, फिर वहां जब
2: हाँ
1: लगाते
2: मतलब
1: हैं तो
2: जी
1: मक्का
2: सर
1: सड़ने लगती है।
2: जी।
0: तो आपका आपका आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब उस
1: मक्का सड़े ना, ऐसा
2: ऐसे
1: कोई
2: बीज की
1: बीज?
2: कोई क्वालिटी बताइए सर, ताकि वो खराब ना
0: देखिए,
2: हो मक्का का
0: इस
2: पेड़।
0: प्रकार की मिट्टी में जब भी आप बीज बोए, कोई सा भी बीज बोए, आपको बीज उपचार करके जरूर बोए आप एक बार। थायरम एक उससे थायरम से या बेवेस्टिन से आप बीज को उपचारित करें, और उस बीज को आप कल्चर जरूर डालें, चाहे वो आप एजियोस्पर्म कल्चर ले ले या उसको आपको जो भी हो PSV ले ले, उस कल्चर से उपचारित करके यदि आप बोओगे तो बीज नहीं सड़ेगा आपका।
2: अच्छा, जी,
1: जी
2: क्योंकि सर हम आए थे मतलब काफी ज्यादा सूखे घास वाले ये खेत ज्यादा मिलेंगे।
0: हाँ, तो कोई बात नहीं है, आप होने दो, उसमें आप बीज को उपचारित कर दें एक बार, फिर देखिए आपको ये दिक्कत नहीं आएगी।
1: वैसे तो आजकल जो बीज किसान भाई खरीदते हैं उपचारित ही आता है, बहुत हद
0: वो सर
1: तक
0: उपचारित आता है, लेकिन
1: मेडिकेटेड
0: अब
1: होता
0: वो
1: है,
0: उपचारित क्या है, जब हम बीज को उपचारित करते हैं तो वो केवल दवाई उसमें वो मिल के
1: डली हुई
0: आते हैं,
1: होती है। हाँ
0: जबकि
1: हाँ
0: अपन को FIR सिस्टम से उपचार करना, चले पहले फंजीसाइड से, फफूंदनाशी से, फिर कीटनाशी से, फिर कल्चर से, इस प्रकार से तीनों से उपचारित करके बोगे तभी आपका बीज संरक्षित रह पाएगा, नहीं बरसात में बहुत जल्दी
1: पड़
0: खराब हो
1: जाता है।
0: जाएगा।
1: वाकई ये भी सच बात है, ये मक्का जो है मोटे अनाज में आती है, और ये थोड़ा सा कम पानी वाली जगह पर लगाने वाली फसल है,
0: कम पानी
1: तो
0: जगह पर थोड़ा सा उथला भी रहे
1: उथला
0: उसका
1: भी रहना
0: बीज रहता है,
1: चाहिए।
0: जैसे और बीज 5 सेंटीमीटर पे इसका कम से कम

0: तीन तीन चार पे आपको लगाना।
1: तो वही है कि किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि हर जमीन में हर फसल नहीं लगाई जा सकती, हमें फसल की स्वभाव को, उसके नेचर को
0: उसके
1: भी ध्यान में
0: नेचर को,
1: रखना
0: मिट्टी की
1: पड़ेगा कि
0: प्रकृति
1: वो,
0: को समझना
1: हाँ, उसको
0: जरूरी
1: भी समझना होगा। हमारे अगले श्रोता भी जुड़ गए हैं, जानते हैं कहाँ से कॉल है। हेलो,
2: है। हेलो नमस्कार,
1: नमस्कार जी, कहाँ से कॉल किए हैं?
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: राकेश जी, आपका शिमला से फोन आता है, बहुत अच्छा लगता है, हर रविवार आप फोन करते हैं।
0: जी
1: कैसे
0: जी
1: हैं
0: बढ़िया
1: सर?
0: बढ़िया है। अभी बारिश हो रही थी और क्या बोलते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो किसानों के लिए जो जानकारी मिलती तो हम उसका लाभ लेते हैं, तो
1: जी
0: आकाशवाणी
1: जी
0: भोपाल के माध्यम से।
1: जी जी मैं आपकी इस भावना की बहुत इज्जत करता हूं, और मैं आपको बता दूं कि हमारी आकाशवाणी, यह पूरा रेडियो जो है ना, इसके
0: जी जी
1: 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं,
0: जी 90 वर्ष पूरे होने वाले,
1: नब्बे
0: तो उसके लिए
1: वर्ष
0: आपको,
1: से जी।
0: आपके पहले से बधाई शुभकामनाएं।
1: तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप जैसे सुधी श्रोताओं से ही रेडियो है ना
0: जी जी जी जी
1: जी।
0: जी
1: आपका
0: जी
1: सवाल बताइए राकेश जी।
0: जी मेरा ये सवाल है कि हमने अभी सोयाबीन लगाई थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम खाद डालते हैं तो उसमें हमें किस क्या क्या प्रावधान का क्या क्या हमें सावधान रखनी पड़ेगी, ये
1: रखनी
0: मेरा
1: पड़े,
0: विस्तृत
1: शिमला
0: सवाल
1: में
0: है।
1: आप सोयाबीन लगाते हैं?
0: जी लगाते हैं हम
1: लगाते
0: सोयाबीन,
1: हैं,
0: लगाते हैं पर हिमाचल में अलग किस्म की सोयाबीन होती है जो
1: अच्छा
0: आपके
1: अच्छा
0: इधर की नहीं होती हमारे यहाँ।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए पूछा कि सर बताइए।
0: जी देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि सोयाबीन में आप उर्वरक प्रबंधन, आपको मैं एक बार मैंने और एक किसान को ही बताया था, आपने शायद सुना हो कि हमारी सोयाबीन एक दलहनी फसल है और इस दलहनी फसल में नाइट्रोजन नत्रजन स्थिरीकरण का कार्य होता है, तो इसमें विशेष रूप से आपको यह ध्यान देखने की जरूरत है कि आपको नाइट्रोजन का कम से कम प्रयोग करना है, जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस का प्रयोग करना है, और दाने में चमक आए इसके लिए आपको पोटास का प्रयोग करना चाहिए। तीनों जो उर्वरक है आपको सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। चौथी सबसे मुख्य बात यह है कि ये दलहनी फसलों में और खरीफ के मौसम में इन बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ये हमेशा डाल के खेत में रखना है, क्योंकि अभी आपने डाल दिया होगा गर्मी में और अब आप उसकी जुताई करके समतलीकरण करने का काम करके और आप उसको यदि बुवाई सही तरीके से करते हैं तो आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है कि आप बीज को उपचारित करके जरूर बोए।
1: धन्यवाद राकेश जी हमें फोन करने के लिए। और सर, जैसा कि सोयाबीन की जब भी फसल की बात आती है तो हमेशा किसान भाई उसमें दो चीज़ें करते हैं, एक तो क्या सिंगल सुपर फास्फेट का पहले भुरकाव किया और उसके बाद में उन्होंने अपना बखर वगैरह कर देते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट का डोज क्या होता है?
0: सिंगल सुपर फास्फेट का डोज आपको कम से कम 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको डालना पड़ेगा। इतनी ही मात्रा में आपको 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करना पड़ेगा और नाइट्रोजन का आपका प्रयोग 40 से ज़्यादा न करें, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। इसमें दिक्कत क्या आती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। यदि आप कम मात्रा में नाइट्रोजन डालोगे तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि नहीं हो पाएगी,
1: बिल्कुल।
0: और फास्फोरस कम डालोगे तो वृद्धि जड़ों की नहीं हो पाएगी, और पोटास के लिए आपको दानों की क्वालिटी, इसलिए तीनों फर्टिलाइजर का हमारे किसान भाई को प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जिन किसान वार्ताओं थोड़ा सा मिट्टी की जांच भी करवा ले, यदि मिट्टी की जांच में ये पाया जाता है कि उनकी जो मिट्टी यदि अम्ली है या क्षारी है उनकी, तो क्षारी मिट्टी के लिए आपको कम से कम जिप्सम का प्रयोग हमारे
1: करना
0: किसान भाइयों
1: पड़ेगा।
0: को करना जरूरी है, क्योंकि इसमें सल्फर तेल बनता है, तो तेल वाली फसलों में सल्फर बहुत आवश्यक होता है।
1: अच्छा, ये भी है कि कई लोगों को मैंने देखा है कि बखरनी हो गई है उसके बाद में फिर डालते हैं, कुछ किसानों का ये है कि पहले डाल देते हैं उसके बाद फिर बखर कर देते हैं
0: नहीं, सही तरीका तो पहले खेत की तैयारी करें हमारे
1: जी।
0: किसान भाई अच्छी तरह। जब खेत पूरी तरह से तैयार हो जाए तो बीजों का बढ़िया अंकुरण प्रतिशत देख के और एक उपयुक्त समय देख के आप बुवाई कर सकते हैं,
1: कर सकते
0: खाद
1: हैं।
0: आपको पहले ही डालने पड़ेंगे।
1: एक और बड़ा ज्वलंत सवाल हमारे सारे किसान भाइयों के दिमाग में इस समय होगा और मेरे मन में भी है, वह यह कि इस समय जिस तरह से मौसम विभाग का बार बार अलर्ट आ रहा है कि ब्रेक लंबे पड़ेंगे, मतलब पानी बारिश होगी और फिर रुकेगा, ऐसी स्थिति में कौन सी किस्म सबसे बेहतर मानते हैं आप?
0: देखिए हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत सारे सोयाबीन की वैरायटी निकाली है, उसमें आपको दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो जल रुकना नहीं चाहिए, सोयाबीन की फसल में पानी, जैसा कि आपने बताया बहुत स्पेल ड्राई स्पेल आता है, तो पानी ज्यादा भी बहुत ज्यादा नुकसान है और कम भी बहुत।

0: ज्यादा
1: बिल्कुल।
0: नुकसान है। ये दोनों स्थिति हमारे किसान भाइयों को समझना चाहिए। यदि किसान का पानी ज्यादा हो जाता है तो कुछ नालियों का निर्माण करके पानी को बाहर निकाल दे, और यदि ड्राई स्पेल होता है तो ऐसी व्यवस्था हमारे किसान भाई को रखे कि उसमें पानी दे सके। इसीलिए इसके लिए हमारे GS 335 बहुत सारी वैरायटी है, ब्रैग करके एक वैरायटी बहुत अच्छी आती है, वो आप डाल सकते हो, 2769 आप डाल सकते हो, 2760 है वो आप दे सकते हो, बहुत सारी वैरायटी है जिनका कि हमारे किसान भाई प्रयोग करके खेत में उपयोग कर सकते हैं।
1: और मैं समझता हूं कि मेड नाली पद्धति से जो बोने की बात
0: बस
1: कही
0: वो
1: जाती है वो
0: फरो
1: इस
0: और
1: समय
0: बेड
1: तो
0: बेड राइज्ड वाली जो है
1: जी
0: वो उसका भी प्रयोग हमारे किसान भाई कर
1: कर
0: सकते हैं,
1: सकते हैं,
0: उनका भी हमारे किसान भाइयों प्रयोग करना
1: करना
0: चाहिए।
1: चाहिए। और मैं तो अपनी तरफ से किसानों से ही कहूँगा कि पूरे खेत में अगर आप सोयाबीन नहीं बो रहे हैं, थोड़ी सी जगह बचा लें, वहाँ ढाल जहाँ पर हो तो वहाँ एक गड्ढा पहले से अभी बना के रख लें। मौसम अभी खुला हुआ है, बारिश आएगी तो कम से कम आपको एक लास्ट मोमेंट लगता है बिल्कुल आखिर में कि अब क्या करें, बारिश नहीं हो रही है, पानी वहाँ से आपको मिल सकता है। और बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे मित्रों, हम आपसे कहते हैं कि आप हमें फ़ोन कीजिए, बहुत अच्छा समय है, सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए एक हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हेलो,
2: हेलो
1: स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में।
2: जी सर, नमस्कार डॉक्टर
1: नमस्कार
2: साहब को नमस्कार। मैं नरेंद्र डांगी बोल रहा हूँ, जिला सीहोर तहसील शामपुर से।
1: नरेन जी, कैसे हैं?
2: सर बढ़िया,
1: आप
2: भगवान
1: तो
2: की
1: बहुत
2: कृपा।
1: पास से फ़ोन लगाते हैं, पर अच्छा लगता है नियमित रूप से आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और हमें फ़ोन करते हैं। और
2: जी
1: क्या योजना है आगे खरीफ की?
2: सर, मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि हम सर रबी सीजन में 1 एकड़ में 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं सर, वो यानी वो खरीफ फसल में वो खाद काम देगा कि डालना पड़ेगा हम।
0: नहीं, देखो आपको दोबारा खाद, आपने दोबारा खेत की तैयारी की है तो क्या होता है, जैसे आपने रवि में जो खाद डाला था ना, वो तो बहुत सारी गर्मी, आप देखो कितनी गर्मी पड़ी, उस गर्मी में हो सकता है ऊपर उड़ गया हो, एवोपरेट हो गया, और नाइट्रिफिकेशन डिनाइट्रिफिकेशन बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं तो वो चला जाता है, इसलिए आपको दोबारा ही डालना पड़ेगा। और ये सब खाद आप तीनों संतुलित मात्रा में, खादों के अलावा आपको कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व, कुछ द्वितीय पोषक तत्व जिसमें कैल्शियम सल्फर भी आपको NPK के साथ डालना पड़ेगा।
1: सीधी सी बात है, नई यात्रा कर रहे हैं तो नया टिकट लेना पड़ेगा
2: ठीक है
1: है ना। धन्यवाद फोन करने के लिए। सर सोयाबीन की बात हो गई है, धान की बात नहीं हुई है। वाकई खरीफ में धान का रकबा बहुत बढ़ जाता है। धान में जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जो कहा जा रहा है कि बारिश रुक सकती है या बारिश लंबा ब्रेक ले सकती है, वहां धान में क्या सावधानी बरतें?
0: देखिए सक्सेना सर, अब कुछ धान की ऐसी वैरायटी आएगी, जैसे अपन गेहूं बोते हैं ना, ऐसी भी वैरायटी धान की आएगी। पहले हम धान का मचेला तैयार करते थे, पानी भरते थे, बहुत सारी दिक्कत
1: बिचड़ा
0: करते।
1: तैयार होता था।
0: अब किसानों का वो बहुत कम हो गया।
1: हाँ
0: अब किसान केवल पानी, जैसे ही पहला पानी पड़ता है और खेत की तैयारी करके वो किसान डायरेक्ट बो सकता है। फिर यदि भगवान ने पानी दे दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप लगा के आप
1: सिंचाई कर
0: उसको
1: सकते हो।
0: ज़्यादा से ज़्यादा पानी, जरूरत है 3-4 पानी आप दे सकते हो, उससे भी आपका धान हो सकता है। अब इस प्रकार की बहुत सारी वैरायटी आ गई, इसलिए हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह मचेला बना दे तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाते तो भी आप हल्की जो हल्के क्या कहते हैं सीड ड्रिल से भी आप उसकी बुवाई
1: बुआई कर
0: कर
1: सकते
0: सकते
1: हैं। अच्छा, इसमें उर्वरक प्रबंधन की अगर
0: हैं।
1: बात
0: हाँ,
1: करें,
0: उर्वरक प्रबंधन में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों तरह के उर्वरक आपको डालने पड़ेंगे, संतुलित मात्रा में डालने पड़ेंगे, मिट्टी की जांच करके आपको डालने पड़ेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, कम से कम 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, 40 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर, केजी पर हेक्टेयर आपको पोटास फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी, और 30 से 40 kg पोटास की जरूरत पड़ेगी।
1: अच्छा, इस समय धान की नर्सरी डालना शुरू हो चुके हैं
0: हाँ,
1: किसान भाई,
0: नर्सरी कई
1: उसके
0: लोगों की
1: बारे में ही
0: नर्सरी,
1: बताइए
0: हाँ
1: ना।
0: नर्सरी डाल दी हमारे किसान भाइयों को। हम बताते हैं नर्सरी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, और कम से कम 1 हेक्टेयर में कम से कम 10,000 पौधों की इस प्रकार की नर्सरी तैयार करें आप, जिससे कि 40-50 हज़ार पौधे इसमें हों, और उसका पौधा नर्सरी में जिंक का भी प्रयोग करें, NPK का तो करें ही, और स्वस्थ पौधे उसमें किसी प्रकार का रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए, ऐसे पौधों को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, और नर्सरी का बिल्कुल रखरखाव अच्छी तरह से हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए।
1: हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं, जानते हैं कहाँ से कॉल किया है। हेलो,
3: हेलो
1: हाँ जी, स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में।
3: जी सर, ग्राम देवपुर पोस्ट बमना जिला छतरपुर से बोल रहे हुकम चंद यादव।
1: हुकम चंद यादव जी, छतरपुर से आपका फोन है
3: जी।

0: कैसे हैं? बढ़िया हैं
1: जी सर,
0: जी।
1: बिल्कुल।
0: हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन को लेकर। क्या योजना है आपकी? खरीफ में कौन सी फसल लगाएंगे आप?
1: जी सर, यही पूछने थी कि सोयाबीन पिछली पिछले साल जुलाई में 2 क्विंटल सोयाबीन बच गया तो सर जी, वो में अपना स्लो धरो तो वो बेच सकते हैं कि नहीं आप इस साल?
0: बो नहीं पाए थे पिछली साल का सोयाबीन है। कौन सी वैरायटी है?
1: जी सर मालूम नहीं, लेकिन बोरी वही कितने 2 क्विंटल बच गई थी, सिली सलाई जाएंगी कितनी धरी, भी बो सकते हैं या नहीं बो सकते?
2: देखिए,
1: बिल्कुल
2: मैं
1: बिल्कुल
2: आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। सोयाबीन की फसल का हमने खुद ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि यदि 10 बोरों के 4 बोरों के नीचे नीचे वाला बोरा है, उसको भी यदि हम बोते हैं तो भी वो नहीं निकलता है साहब।
0: फूट
2: सोयाबीन
0: जाता है
2: कैसा
0: बीज। हाँ
2: बिल्कुल बेकार हो जाता है। आपका बीज किस स्थिति में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, आप दूसरा नया बीज लेके बोए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं है कि उसका क्या स्थिति है, उसकी क्या स्थिति रही है। फिर भी आपको मैं बहुत सारी
0: और मैं
2: वैरायटी
0: आपको एक
2: बता,
0: बात बताऊं भैया, आपने किस भाव का लिया था बीज?
1: वो 70 रुपया किलो लिया था सर जी।
0: 7,000 के भाव का लिया था ना? 9,000 का तो अभी रेट चल रहा है, बेच दो उसको, बेच के नया बीज खरीद लो।
2: फिर भी मैं आपको बताया तो JS 95 60 ले लो, 20 29 ले लो, 20 34 ले लो, JS की बहुत सारी वैरायटी हमारे पास हैं। JS 97 ना मिलो, NRC की वैरायटी ले लो, 37 है, 86 है। एक अच्छी वैरायटी नई अभी RVS विश्वविद्यालय ग्वालियर ने निकाली है, RVS 2001 4, RVS 2010 1। इन वैरायटियों का प्रयोग करो तो आप बहुत अच्छा लगेगा। पिछले साल की वैरायटी यदि सही हो, मॉइस्चर उसमें सही हो, उसका इनर्ट मटेरियल बहुत सही हो, अच्छा हो, तो आप कहीं एक दूसरे खेत में जहाँ को आपको लगता है वहाँ नहीं, वहाँ आप प्रयोग कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहे। लेकिन मेरी समझ में तो है कि पुराना बीज आप प्रयोग न करें तो ज़्यादा
1: जी
2: अच्छा
1: जी
2: रहे,
1: बिल्कुल जी, ठीक
0: है ना? धन्यवाद फोन करने के लिए। और सर, बाकी बड़ा अच्छा विषय इन्होंने पूछ लिया सवाल। हमारे किसान भाई एक ही वैरायटी को सालों से बोते चले आ
2: आ
0: रहे हैं।
2: नहीं, अब
0: कई
2: वो
0: हैं ऐसे किसान भाई, वो ही
2: देखो, अब
0: निकाला,
2: जो
0: वो ही छाना,
2: वैरायटी
0: वो
2: आ रही है
0: दिया।
2: वो कई हाइब्रिड बहुत अच्छी वैरायटी आ
0: जी
2: रही है, वो उनका जीवन काल एक सीजन है बस,
0: बिल्कुल
2: ज़्यादा
0: बिल्कुल
2: नहीं।
0: बिल्कुल। हाँ
2: हमने कई बार देखा है कि कई बहुत अच्छा अच्छा बीज बाहर से मंगाते हैं और यदि वो नीचे वाला बीज है बोरियों से दबाओ वो भी नहीं,
0: वो भी नहीं उगता है, बिल्कुल सच है।
2: तो ये आपने किस स्थिति में इस बीज को रखा है अपन को क्या मालूम,
0: सही बात है, लोडिंग होके आ रहा
2: लोडिंग
0: है,
2: हो के आया है या
0: दब
2: आपने,
0: गया।
2: हाँ दब गया, बेकार हो गया।
0: तो ये बहुत बहुत ज्वलंत विषय है। हमारे किसान भाई प्रमाणित बीज लेके आ रहे हैं,
2: हाँ,
0: सब कुछ ठीक है, पर उसका अंकुरण परीक्षण हर हाल में
2: हर
0: करके
2: हाल में
0: देख रहे
2: करना
0: हैं।
2: चाहिए, 80 से 90% अंकुरण परीक्षण होना चाहिए।
0: नहीं तो खुश हो जाते हैं, हम तो साहब
2: हाँ
0: वैरायटी का बीज
2: हाँ
0: लाए थे,
2: और फिर
0: और
2: लास्ट में किसान को दिक्कत
0: किसान
2: है,
0: दिक्कत
2: बहुत
0: हो
2: दिक्कत
0: जाती है।
2: है।
0: अंकुरण परीक्षण की भी हम बात करेंगे, हमारे एक और श्रोता जुड़ गए हैं, हम उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो हेलो,
3: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में। कहाँ से सुन रहे हैं हम आपकी आवाज़ को?
3: जिला सागर, तहसील बंडा, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, चरण सिंह
0: चरण सिंह जी,
3: जी।
0: बंडा से फोन है
3: मक्का
0: आपका।
3: बेने तो कौन किस्म की बेने मक्का?
0: मक्का कौन सी किस्म की बेने हैं? सर, मक्का की वैरायटी के लिए बहुत सारे लोगों का फोन बार बार हमारे पास आ रहा है, मक्का की अच्छी वैरायटी बताइए।
2: देखो, सागर में तो बहुत अच्छी अच्छी मक्का होती है आपको मैं बताऊं, और फिर भी हम आपको कुछ मक्का की वैरायटी बोलते हैं, वो आपको कृषि विज्ञान केंद्र सागर में मिलेगी, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। मैं नाम आपको लिखा देता हूँ, एक तो लिखिए जवाहर मक्का के नाम से मिलती है, जवाहर मक्का 2016, ये वहाँ मिल जाएगी आपको। एक पूसा विवेक करके वैरायटी है, अभी अभी आई है मक्का की, बहुत अच्छी वैरायटी है, 90 दिन की वैरायटी है ये, और इसमें विटामिन और प्रोटीन बहुत पर्याप्त मात्रा में है, वो आप प्रयोग कर सकते हो। गंगा 5 ये वैरायटी आप बहुत ज़्यादा उपयोग होती है सागर में, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, 100 दिन की है, लेकिन ये 90 दिन की, तो ये 100 दिन की, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो मक्का की आप बहुत सारी वैरायटी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना ये है कि आपको कैसी मिट्टी में लगा रहे हो, उर्वरकों का क्या आप उर्वरक उसमें दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, बीजोपचार कर रहे हो कि नहीं कर, इन बातों का आपका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।
0: और साथ ही ये भी है कि आपका उद्देश्य क्या है।
2: हाँ,
0: मक्का भुट्टे के लिए
2: भुट्टे
0: बोना
2: के लिए
0: है,
2: बोल रहे चाह रहे, या पशु के लिए, खाने के
0: हाँ,
2: लिए, खाने
0: या
2: उसके
0: आपका
2: लिए
0: उद्देश्य जो है वो
2: चारा,
0: या भुट्टा बेचना है या अनाज के हिसाब
2: अनाज
0: से
2: के लिए
0: आपको करना है।
2: बेचेंगे,
0: सर, आजकल ये भी
2: उसके लिए
0: एक
2: हाइब्रिड मक्का का प्रयोग करना पड़ेगा
0: जी,
2: आपको।
0: स्वीट कॉर्न के हिसाब से जो
2: हाँ
0: मक्का लगाई जाती है उस वैरायटी के लिए भी आजकल बहुत डिमांड है, क्योंकि नकदी फसल के रूप में मैं समझता हूँ कि वो एक मक्का की फसल हो गई है अब तो। ऐसी स्थिति में भी हमें ध्यान रखना होगा। हम वापस अपने प्रश्न पर चलते हैं सर। बात कर रहे थे हम

0: बीज उपचार की, बीज उपचार का सही तरीका क्या है सर, संक्षेप में बता दीजिए।
1: सर, बीज उपचार को अपन को तीन तरह से करना चाहिए, जिसको FIR सिस्टम हम लोग बोलते हैं। इसमें सबसे पहले एक तो यह है कि आपको किसी भी फफूंदनाशी से पहले आपको बीज उपचार करें, दूसरा उपचार आप किसी भी एक कीटनाशक को लेके करें, और तीसरा आप कल्चर से करें। इसके लिए आप 200 ml पानी ले लें और उसमें 100 ग्राम गुड़ ले लें, उसकी एक बढ़िया स्लरी टाइप की बना लें, और उस स्लरी में जितना भी PSV कल्चर है आपका, कोई भी कल्चर है, जो स्पेक्टर है, जो वेक्टर है, जो स्पाइरलम है, कोई भी कल्चर आप उसमें डाल के उसको घोल के एक काला काला सा घोल बना ले, और पूरे बीज के ऊपर आप एक साथ बिल्कुल समतल उसमें एक उसमें स्लरी को पूरे बीज पे लगा दे और छाया में उसको सुखा ले, और छाया में सुखाने के पश्चात दूसरे दिन आप उसका प्रयोग कर सकते हो। अच्छा, तो इस प्रकार से आप करोगे तो आपका बीज का, ये समझ लो कि आपके बीज में टीकाकरण हो चुका, आपका बीज जमीन में जाके किसी प्रकार की जीव कीटाणु से वो उसको नुकसान नहीं कर पहुंच
0: सकता है। मित्रों, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमारे किसान भाइयों ने फ़ोन पर हमसे पूछे हैं, और आपने सर बहुत सफाई से, बहुत बढ़िया तरीके से उनको उत्तर भी दे दिए हैं। इस पूरे कार्यक्रम को सजाने संवारने में हमें जो सहयोग मिला है, मैं आपको बता दूं, उद्घोषिका के रूप में मीठी मधुर आवाज़ लेकर हमारे साथ थी श्वेता तिजोरिया, प्रसारण सहायक के रूप में हमारे साथ थी फरनाज हसन, कंट्रोल रूम से हमको सहयोग कर रहे थे प्रवीण कुमार सिंह और राजू वासे, कार्यक्रम संयोजन श्री चंद्रशेखर शर्मा का था, सूत्रधार के रूप में मैं आपके साथ था मनोज सक्सेना। मैं आप सभी किसान भाइयों का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने हमें कॉल किया, और वे किसान जो केवल हमें सुन रहे थे और ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, फ़ोन लगाने का प्रयास कर रहे थे, फ़ोन नहीं लग रहा था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फ़ोन हमें करते रहिए, हर कार्यक्रम में हम इन्हीं नंबरों पर बात करते हैं। आप हमारा जो कार्यक्रम है, हर बार विषय भी अलग अलग होता है, हर विषय पर हम सवाल और उससे जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ होते हैं, तो अगले रविवार हम फिर आएंगे, लाएंगे हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम। सर, चलते चलते अगर मैं आपसे कहूं कि बस 30 सेकंड में कुछ बात रह गई हो जो लगता है कि होना जरूरी थी।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है। मैं सर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे किसान भाइयों को उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ समसहायक कार्य भी एक इसमें बड़ा अच्छा विषय था। उसमें मैं हम अपने किसानों को बताना चाहता हूँ कि जब भी वो बुवाई करें तो जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम पखवाड़े में करें। दूसरा, 18 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज अनाज है तो प्रयोग करें, चारे के लिए प्रयोग करें तो 40 से 50 किलो, और पौधों से दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, कतार से दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर करके हमारे किसान भाई इसको पूरा कर सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, और इसी के साथ आज की ग्राम सभा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। स्वीकारिए मनोज सक्सेना की राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम।

सुगम संगीत के कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आशीष सेंद्रे। और श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अगम कुमार निगम के गायक कुछ गैर फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में पहली शब्द रचना आपने सुनी पयाम सईदी की। संगीत तैयार किया था निखिल विनय ने, आवाज दी थी अगम कुमार निगम ने।
1: करनी हो तरक्की, बढ़ाना हो व्यापार, तो आकाशवाणी बालाघाट से कराओ प्रचार प्रसार।
2: आकाशवाणी बालाघाट सदैव आपके विकास में अग्रणी।
0: आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। और श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको आज सुनवा रहे हैं अगम कुमार निगम के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत। अब सुनिए योगेश की शब्द रचना। संगीत तैयार किया है निखिल विनय ने।

अगम कुमार निगम की गाय इस गैरफिल्म गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। यह आकाशवाणी बालाघाट है। इस समय रात के 8:15 होने वाले हैं। अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की।

डगर विकास की। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के संदर्भ में। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ई विद्या योजना डिजिटल शिक्षा की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न डिजिटल और दूरस्थ माध्यमों के जरिए छात्रों तक

0: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। भारत सरकार द्वारा पीएम ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत 30 मई 2020 से की गई थी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का मुख्य लक्ष्य देश के सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही पीएम ई विद्या में पारदर्शिता बढ़ाते हुए कम संसाधनों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डीटीएच और टीवी चैनलों के माध्यम से साथ ही ऑनलाइन रूप से देश के सभी विद्यार्थियों तक सुलभ रूप से पहुंच रही है। श्रोताओ, क्या है पीएम ई विद्या योजना, इस संदर्भ में जानकारी देती हुई आप हैं छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में पीएम ई विद्या की प्रभारी और माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी की एचओडी डॉक्टर अमिता आर्जरिया।
1: 20 सितंबर 2004 को एजुसेट एक सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा शहर का बच्चा एक साथ जुड़कर एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके स्थापित होने के बाद दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाना संभव हो गया। जो पहाड़ी इलाके के बच्चे थे जहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पढ़ना चाहते हैं कैसे पढ़ते, तो इस सैटेलाइट के छोड़ने के बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के कोर्स हुए और टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे वो स्लाइड बनाते हैं, कैसे पोर्टल पे डालते हैं, कैसे दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को जोड़ते हैं। तो ये 2004 में चालू हो गया था और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भारत में इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हम नरोरा एकेडमी भी गए थे, जहां पर हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया था कि कैसे सैटेलाइट को अपन मटेरियल देते हैं, कैसे फोटो खींचते हैं, फिर कैसे टेप करते हैं, फिर कैसे दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं। और जिससे उसके आ जाने के बाद बहुत सारे स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब आपस में जुड़ गए। जिस प्रकार चिकित्सालयों में और न्यायालयों में आजकल सुविधा हो गई, उसी प्रकार 2000 के बाद एजुसेट के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति आ गई थी। उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि कम समय में कम लागत में बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए। इसी शिक्षा के बाद 17 मई 2020 से एक और प्रोग्राम जोड़ा गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को विश्वविद्यालयों को स्कूल को संचार माध्यम के द्वारा जोड़ा जाए, रेडियो के द्वारा, भाई सैटेलाइट के द्वारा, रेडियो रहते हैं, टीवी और मोबाइल, इनसे जोड़ा गया, जिससे जिनके पास सैटेलाइट है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास टीवी है, जिनके पास रेडियो है, उन सारे माध्यमों से बच्चे जुड़ सके। इसका मेन उद्देश्य था कि बच्चे को, मान लो वो अनुपस्थित है तो उसको गृह कार्य भी प्राप्त हो सके, बच्चा नहीं जा पा रहा किन्हीं कारणों से तो उन बच्चों को बिना जाए वो शिक्षा घर से प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल में बैठा सबसे बात का कोने का विद्यार्थी है और शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास साधन है, ना उन पास लाइट है, तो वो कैसे शिक्षा करेगा, कैसे ग्रहण करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति का प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस माध्यम से समस्त विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। आज भारत का दूरस्थ का विद्यार्थी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे एससी एसटी का हो, अगर उसके पास बड़े संसाधन नहीं है तो मोबाइल की सहायता से वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वयं पोर्टल स्थापित किया गया है उसमें क्रेडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, हर क्षेत्र का उसमें ज्ञान है, बड़े बड़े प्रशिक्षित लगे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लगे हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं जो अपनी वेबसाइट डाले हुए हैं, और हर विषय का, हर भाषा में, सबसे बड़ी बात हिंदी इंग्लिश में तो था ही, इसके अलावा हर विषय का। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी में झेपता है या संस्कृत में या मलयालम में, वो स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है कि भारत में बोले जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं को सेंट्रलाइज किया गया है। इंग्लिश का मेन सिलेबस है, उससे हर भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है, जैसे हर क्षेत्रीय भाषा का विद्यार्थी उसको प्राप्त कर सके। दूसरी चीज वैल्यू एडिट कोर्स बनाया गया है। वैल्यू एडिट कोर्स का मतलब है मूल्य आधारित शिक्षा। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी मूल्य है, कुछ भी बनाना आता है, चपाती बनाना आता है, बहुत अच्छा पराठा बनाना आता है, कोई भी कौशल है, उस कौशल के आधार पे वो शिक्षा ग्रहण करे और सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का ऋण देती है, जिससे वो प्रशिक्षित होता है, उसे मेंटर मिलता है, प्रशिक्षण बाद वो उस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक नई चीज बनाता है और उसका उसे मूल्य पता रहता है, उसका वैल्यू का मतलब मूल्य आधारित, तो उसे इंटेलेक्चुअल

0: प्रॉपर्टी राइट के तहत वो पेटेंट करा सकता है, जीआई टैग करवा सकता है, कुछ भी कॉपीराइट करा सकता है। तो ये अभी उसको भी स्वयं पोर्टल से जोड़ा गया है कि जिन विश्वविद्यालयों में बीएसी के वैल्यू एडेड कोर्स के टीचर्स नहीं हैं या उतनी सुविधा नहीं है, तो स्वयं पोर्टल में अगर बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है तो उस विषय से संबंधित ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है किसी भी भाषा में।
1: जी मैडम, हम इसमें एक और चीज पूछना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ई विद्या योजना है, इसमें कुछ और माध्यम जुड़े हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई होती है, कुछ पोर्टल और भी जुड़े हैं।
2: हाँ, इसमें कुछ और माध्यम भी जुड़े गए हैं।
0: हाँ, एक है दीक्षा पोर्टल, पीएमई विद्या के मुख्य घटक है दीक्षा पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को ई बुक मिली है, वीडियो मिले हैं, क्विज है और बहुत सारी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई कि कैसे बच्चों को कभी भी कोई भी जानकारी किसी समय वो अंदर खोज सकते हैं और उन्हें प्राप्त हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आईआईटी है, जेई है, नीट है, पीएससी है, सारी भाषाओं में बहुभाषीय माध्यम में अध्ययन सामग्री को इंटरनेट से प्राप्त कर सकता है, पढ़ सकता है। ये सबसे ज्यादा उपयोगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। पीएमई विद्या के मुख्य घटकों के द्वारा पूरा भारत एक हो गया है और पूरा भारत जब एक हो जाएगा तो विकास की दर भी एक ही दशा में बहेगी और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा।
3: श्रोताओ, पीएम ई विद्या योजना में सरकार द्वारा कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल चैनल खोले गए हैं, जिनमें स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट प्रसारण से उन क्षेत्रों में बच्चों के लिए विशेष रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो किसी कारण से कक्षा में नहीं पहुंच सकते और ये शिक्षा काफी प्रभावी भी हो रही है। पीएम ई विद्या योजना के क्रियान्वयन और विद्यार्थियों के लिए सुलभ सुविधाओं के संबंध में हमें जानकारी देते हुए आप हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक एक के पीएम ई विद्या के प्रभारी वरिष्ठ शिक्षक नीरज वाजपेयी।
4: ये माननीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक बृहद स्तर का व्यापक डिजिटल शिक्षा उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा एक से बारहवीं तक की स्कूली शिक्षा के छात्रों और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ युवाओं को टीवी, इंटरनेट और रेडियो के माध्यम से हाई क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रदान करना है, जिससे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें मिल सके। और इसको संचालित करने के लिए हमारे भारत सरकार के अंतर्गत जो आईटी मंत्रालय है और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इन सबके समन्वय से प्रमुख रूप से कई पोर्टल्स चल रहे हैं, जिसमें दीक्षा पोर्टल्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा। दीक्षा पोर्टल है, इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान है। दीक्षा पोर्टल में स्कूल शिक्षा के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वन नेशन और वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। भारत के सभी राज्यों और एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई जितनी भी पुस्तकें हैं और उन सारी पुस्तकों की डिजिटल सामग्री उसमें अपलोड है। अभी कोविड काल के दौरान जब हम स्कूलों को बंद पा रहे थे, तो हमने इसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्वयं से 16 प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षण इस दीक्षा पोर्टल पे दिए हुए थे। और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इसमें जो पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, ये इसका शॉर्ट वर्जन है दीक्षा। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बड़ा प्लेटफॉर्म जो पूरे भारत में दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा की बांट जो रहे छात्रों को, ये एक बहुत बड़ा सुगमता प्रदान करता है। शिक्षा से वंचित और बहुत सुदूर स्थित व्यक्ति भी जहां तक इंटरनेट पहुंच जाता है, तो ये दीक्षा पोर्टल उसको डिजिटली लर्निंग प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा टूल है।
3: श्रोताओ, पीएम ई विद्या योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभार्थी कुछ विद्यार्थियों से उनके अनुभव हमने जाने। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के माध्यम से, स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपने शिक्षा को पंख दे रहे हैं हमारे युवा। इस योजना के लाभों के संदर्भ में हमें जानकारी देते हुए आप हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से एमए के छात्र सौरभ द्विवेदी।
5: कई बार ऐसा होता था कि मुझे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता था। कुछ थिंकर्स ऐसे आ जाते थे कि जिनको मुझे बुक में भी उनका मतलब कि क्लियर कट नहीं मिलता था कि क्या उनने रिसर्च की है। मुझे रिसर्च में प्रॉब्लम हो जाती थी कि उनने क्या की है, क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में लिखना है। तो इसके लिए मैंने स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं जब स्वयं पोर्टल पर जाता हूँ तो मुझे जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैटर चाहिए होता है तो मैं उस पर सिर्फ टॉपिक का नाम डालता हूँ, उसमें पार्ट बाई पार्ट आ जाता है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कई जगह ऐसा मिलता है गूगल पे, जैसे हम लोग ट्राई करते हैं तो उसमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, दो तीन लाइन मिलेंगी फिर यहाँ वहाँ का दे देंगे। पर स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हम टॉपिक का नाम डालेंगे जैसे ही, तो उसमें हम उसकी प्रस्तुति

0: कामना, उसके उपसंहार, उसकी विभिन्न प्रकार की हेडिंग, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी आलोचनाएं, हमें सभी चीजें स्वयं पोर्टल पर क्रमबद्ध तरीके से मिल जाती है, जिसको पढ़ने में और समझने में काफी सरलता होती है। और सबसे अच्छी बात एक मुझे ये लगी कि स्वयं पोर्टल की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, एक बार पढ़ने में ही वो हमारे माइंड में आ जाती है।
1: सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, स्वयं पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और जो नए विद्यार्थी से जुड़ना चाहे या जो भी हमारे नागरिक स्वयं पोर्टल से जुड़ना चाहे कैसे जुड़ सकते हैं?
0: जैसे स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आजकल देखिए सभी के पास एंड्रॉइड फोन तो होता ही होता है, लैपटॉप हो तो और अच्छी बात है। यदि नहीं है तो हम अपने एंड्रॉइड फोन में गूगल ओपन करेंगे या गूगल क्रोम ओपन करेंगे, उसमें जाकर हम स्वयं पोर्टल लिख देंगे सीधा, उसकी जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना है। उसको जैसे ओपन करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है लॉग इन का। यदि आप पहले से स्वयं पोर्टल पर इनरोल हो तो आप आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हो। यदि आप नए यूजर हो या पहली बार आईडी बना रहे हो तो उसमें ऑप्शन आता है साइन इन का, तो उसमें हम साइन इन अपना मोबाइल नंबर ईमेल डालकर हम उसमें साइन इन कर सकते हैं और अपने पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। उसमें हमें एक आईडी पासवर्ड मिल जाती है, कभी भी कहीं भी किसी भी फोन में उसको लॉग इन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर से उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो भी हमारे डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है, हम उसे क्लियर कर सकते हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो सौरभ, पीएम ई विद्या के अंतर्गत आपने स्वयं पोर्टल की बात की है, कैसे आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो रहा है, आपको क्या क्या लाभ हो रहे हैं पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से?
0: पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से मुझे लाभ, सबसे ज्यादा लाभ ये हो रहा है कि मैं कहीं पर भी, जैसे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी में किसी काम से आया हूं, मैं बुक नहीं लिया हूं, मुझे पढ़ना है, तो मैं तुरंत अपने फोन में लॉग इन करके स्वयं पोर्टल में आईडी लॉग इन करके कुछ भी पढ़ सकता हूं। स्वयं पोर्टल पर हम जाते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर मिल जाता है, तो इससे हमें प्रॉफिट है कि हम कहीं भी कभी भी पढ़ लेते हैं, एग्जैक्ट आंसर मिलता है।
1: विद्यार्थियों के लिए कैसे मददगार है उनकी पढ़ाई में या उनके और आगे बढ़ने में हमारा पीएम ई विद्या और स्वयं पोर्टल?
0: विद्यार्थियों के लिए पीएम ई विद्या बहुत ही मददगार है। पीएम ई विद्या के माध्यम से कई पोर्टल भी हैं इनके, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा मानता हूं, जो मैंने अभी तक उसका उपयोग किया है, स्वयं पोर्टल है। स्वयं पोर्टल में हमें मददगार ये है कि ना तो उसमें कोई हमारा पैसा लग रहा है अलग से, ना कोई बुक लेनी है, ना बैग में कोई वजन हो रहा है, और हम कहीं भी डिजिटल रूप से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है कि हम डिजिटलता को अपनाएं, हम डिजिटल हों, हम जितने ज्यादा डिजिटल होंगे उतना ही अच्छा रहेगा।
2: श्रोताओ, पीएम ई विद्या योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसमें और अधिक समावेशी शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना पीएम ई विद्या योजना से जुड़े और अपने सपनों को पंख दें। इसी के साथ ही डगर विकास के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब संपन्न हुआ। सहयोगी राजेंद्र हरवार और प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति, योगदान आकाशवाणी छतरपुर का।

डगर विकास की श्रोताओं, अभी ये आप ये समन्वित कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस समय रात के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम। आज के कलाकार हैं हैरी आनंद।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम। यह है कार्यक्रम का अगला पॉप सॉन्ग। सुर और संगीत हैरी आनंद का, गीतकार हैं श्याम बालकर।

0: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का अंतिम पॉप सॉन्ग। हैरी आनंद और साथियों की आवाजों में यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। इस समय रात के 8:45 होने जा रहे हैं। अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं।

0: जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्ड

0: में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को एक वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से

0: 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Nam Kham town of Myanmar. India's Sathvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open Badminton Tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swim

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्पॉटलाइट समाचार एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। इस समय रात के 9:30 हुए हैं। अब हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: आप हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं विविध भारती से। थोड़ी ही देर में सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं। लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में कार्य करते थे।

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है दोस्तों। फिल्में जो भी हों लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल कहा गया था।

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

0: 1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।
1: मैं

राज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

0: चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।
1: दी

अपनी शैली से हटकर, टाइल से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म 16वां साल।

1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।

राज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्ताना।

0: चली है चोरी हो चोरी काली पलक पिया मूरी।
1: राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में ली।

वो तो यकीनन इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताज़ा बनाए रखेगा।

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से, बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन तुम्हारी तरफ। खींचा चला जाता रहा सदियों से, सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन।

हमें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते

कहीं कोई आवाज नहीं हुई, कुछ टूटा जरूर, पर बेआवाज। दिल टूटने की आवाज नहीं होती, दिल बेआवाज टूटता है। चेहरों पर नकली मुस्कान।

कुछ कहना नहीं होता है, ना ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था, लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ भाषा में नहीं कहा जा सकता, सब कुछ होंठों पर लाना जरूरी नहीं है। एक अदृश्य सा पुल है जो एहसास बनाती है।

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाती है, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में फर्क होता है।

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने, पर देखो ना, तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़ना और फैलना बेचैन करता है हमें, पर थाम भी तो नहीं सकते हम वक्त को। ये वो मुसाफिर है जिसे बस चलते ही जाना है।

की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी

श्रोताओं, अब तक आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। इस समय रात के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत हम शामिल करते हैं कठपुतली फिल्म से। आवाज़ें दी है किशोर कुमार और साथियों ने। गीत है वर्मा मलिक का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे कठपुतली फिल्म का गीत। गीत था वर्मा मलिक का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में अब सुनिए घरौंदा फिल्म का गीत। आवाज़ दी है भूपिंदर सिंह ने, गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं जयदेव।

श्रोताओं, ये गीत था घरों दा फिल्म से। आवाज़ दी थी भूपिंदर सिंह ने। गीत था गुलजार का, संगीत जयदेव का। श्रोताओं, इस सदाबहार फिल्मी गीत की जो खास बात थी, ये गाना बड़े शहरों में अकेलेपन और घर की तलाश की भावनाओं को दिखाता है। गुलजार के लिखे शब्द, जयदेव का सूफियाना संगीत और भूपिंदर सिंह की गहरी आवाज़, तीनों ने मिलकर इसे कालजी बना दिया। भूपिंदर सिंह का ये सबसे मशहूर गाना माना जाता था। अब हम सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में शामिल करते हैं जोशीला फिल्म का गीत। आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, ये गीत था किशोर कुमार की आवाज़ में जोशीला फिल्म से। बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने, धुन तैयार की थी आरडी बर्मन ने। आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अर्पण फिल्म का वो गीत जिसमें आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। शब्दकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, ये सुमधुर आवाज थी लता मंगेशकर की, जिसे हमने लिया था गीत अर्पण फिल्म से। बोल लिखी थी आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का हम समापन करने जा रहे हैं प्रेम रोग फिल्म के इस गीत से। आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। संतोष आनंद की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। इस समय रात के 11 बजने को हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी समाचारों के लिए।

0: मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वाला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी बलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

0: पार्टी एनसीपी दो सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ooh Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratanlal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education CBSE has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharam